0: उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं।
1: ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ही ऑपरेशन हो जाएगा।
2: So Apple WWDC 2026 has indeed come to a conclusion and lots of updates coming in for Apple users. The biggest of them all is the new Siri AI, which a lot of Apple users will definitely look forward to. Siri gets a completely redefined look and also becomes more contextual, more intuitive. Apple intelligence also gets more closely knitted into the entire ecosystem, and that's something that Apple users will definitely appreciate because now Google's integration is going to make your overall experience much better. Some child control, let's say you have minors using Apple devices and also exposed to the Apple ecosystem, well, parents can control some of these features now and have a closer look of what their child is doing when they're using Apple ecosystem and devices. So these are some of the updates that have come in from WWDC 2026. But again, the biggest announcement is around how Apple intelligence is now becoming smarter, more intuitive, and more useful for a lot of the users who are not only on the iPhone but also across different devices. So yes, big updates coming in for all of the Apple users and something to look forward to. Now these features, as Apple said, will be rolled out in the coming months. It's not going to come immediately, but yes, developers will be able to test out some of the features and find bugs if there are any. So yes, I feel that this WWDC was more about polishing some of the existing features and making AI genuinely useful, and also making sure that the data that the users have stays protected, stays behind private cloud and also on the device, so that other, well, they say that other AI devices can exploit your data. That's something that's not happening in the Apple ecosystem. So yes, big updates coming in from Apple WWDC 2026 and lots to look forward to for Apple users in the coming months.

0: उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं।
1: ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ही ऑपरेशन हो जाएगा।
2: So Apple WWDC 2026 has indeed come to a conclusion and lots of updates coming in for Apple users. The biggest of them all is the new Siri AI, which a lot of Apple users will definitely look forward to. Siri gets a completely redefined look and also becomes more contextual, more intuitive. Apple intelligence also gets more closely knitted into the entire ecosystem, and that's something that Apple users will definitely appreciate because now Google's integration is going to make your overall experience much better. Some child control, let's say you have minors using Apple devices and also exposed to the Apple ecosystem, well, parents can control some of these features now and have a closer look of what their child is doing when they're using Apple ecosystem and devices. So these are some of the updates that have come in from WWDC 2026. But again, the biggest announcement is around how Apple intelligence is now becoming smarter, more intuitive, and more useful for a lot of the users who are not only on the iPhone but also across different devices. So yes, big updates coming in for all of the Apple users and something to look forward to. Now these features, as Apple said, will be rolled out in the coming months. It's not going to come immediately, but yes, developers will be able to test out some of the features and find bugs if there are any. So yes, I feel that this WWDC was more about polishing some of the existing features and making AI genuinely useful, and also making sure that the data that the users have stays protected, stays behind private cloud and also on the device, so that other, well, they say that other AI devices can exploit your data. That's something that's not happening in the Apple ecosystem. So yes, big updates coming in from Apple WWDC 2026 and lots to look forward to for Apple users in the coming months.

0: बेईमानी उनके खून में है ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, पण या पक्षाने आम्हाला आता परंजी दिलेला आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे चे लोक कोण जात आहेत हे? नाही डोंट कट, एक कट मत करना। हा ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा।
1: And there you heard from Sanjay Raut, who's calling out the quote-unquote traitors, saying that Balasaheb Thackeray treated them like his children. Uddhav Thackeray has given us all the love with all his heart. But here are the traitors who left our fold. And Sanjay Raut being Sanjay Raut, of course, saying that do not edit out the abuse. Let me take this to my colleague Amit Bhardwaj, joining us on the broadcast. Amit, well, he is... clearly unfiltered like always, and even to the extent that he says that these are mere traitors who are going us who are leaving our fold, and saying do not edit out the abuse because I will say what I have to say.
2: Yes, that's what Mr. Sanjay Raut did here in the press conference. First, one abuse was hurled during the press conference, and after that, second one came in, which took everybody by shock. And immediately, he also underlined that do not cut this out. He wanted it to be out there in the public domain, saying that do not edit it. That's how I want it. So yes, as you were rightly mentioning, Sanjay Raut unfiltered. And he's also going on to say that now we have to believe that these are traitors. So he's calling his own MPs who possibly are not in touch with the party high command are traitors. But on the same, in the same breath, almost you can hear the very press conference where all this happened unfolded. Mr. Anil Desai saying that all the MPs are with us. I don't have a reason to believe that they have left us until unless they turn around and are seen on the other side. I did ask Anil Desai that who all did you communicate before coming for this press conference? He said all our MPs have confirmed us that they are with the UBD faction, with the Shiv Sena UBD, and we are going to hold a parliamentary party meeting tomorrow. There are speculations which are doing rounds and we need to confirm it. So they are seeking legal recourse. They'll be reaching out to the Lok Sabha Speaker's office in regards to this, and they want that they're saying that under the constitution there is no provision of creation of any faction, as argued by the Trinamool Congress days back as well, that you cannot create a faction in the parliament, you will have to merge into some party. For Trinamool, a solution was found. NCPI came out as a solution for the Trinamool. Out here, it seems like the Eknath Shinde party will be the option where this rebels, if it happens successfully, might merge.
1: Amit, do stay on. Mr. Anand Dubey of the Sena fold of the UBT faction is with us on the phone line. Dubey ji, aapka kya kehna hai is pure mudde par?
3: हमारा क्या कहना है, कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। अब आप सोचिए कि जिस पार्टी, जिस नाम, जिस चुनाव चिन्ह पर आप चुन के आते हैं और आप आधे रास्ते में उस पार्टी को छोड़ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वहां कुछ ताकत मिल जाएगी, कुछ पैसा मिल जाएगा, कोई मंत्री बन जाएंगे आप, तो अब क्या कहें? अब इसके आगे कुछ कहने आप ही लोग बताइए। आप लोग तो इतने बड़े लोग मीडिया है, तो आप तय करिए ना कि ये कहीं रुकेगा या नहीं रुकेगा। आज टीएमसी है, कल शिवसेना है, परसों समाजवादी पार्टी है, मतलब हर वो दल जिसके पास 10 से ज्यादा सांसद हैं या 5 से ज्यादा सांसद हैं, अब वो सब असुरक्षित हैं, क्योंकि भाई या तो आप बीजेपी के साथ रहिए या तो फिर आप टूट जाइए, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि ये दूध पीते बच्चे लोग तो है नहीं कि 3 साल के हैं, 2 साल के, कोई बहला फुसला के इनको ले जा रहा है, ये तो अपनी होशो हवास में जा रहे हैं, थोड़े जिम्मेदारी से जा रहे हैं। तो क्या अब इसका कोई अंत होगा, क्या ये कहीं रुकेगा या अभी जीवन भर ऐसे ही चलेगा, फिर हम लोग चुन के आएंगे, क्यों आएंगे, फिर बाद में टूट जाएंगे, ये बहुत बड़ा इसमें चिंतन मंथन होना चाहिए।
1: दुबे जी,
3: कथा होनी चाहिए बड़ी।
1: दुबे जी, पर उद्धव जी ने कहा कि जिसको जाना है जाने दो।

0: आज हमारा समय नहीं है, जब आएगा तब हम आएंगे, पर आज जिसको जाना है जाने दो। आप लोगों ने क्या कोशिश की इनको होल्ड करने की?
1: तो उसका पैर पकड़ के लटक जाए कि मत जाओ भैया, तब क्या रुक जाएगा? क्या कहें, यही कह सकते हैं, कोई बात नहीं, जाना है तो जाइए भैया। अगर हमें कहें कि मत जाइए, तो क्या वो रुकने वाला है क्या? अगर वो रुकने वाला है तो हम ये भी कह देंगे कि मत जाइए, उसका कोई मतलब नहीं है, कहानी अब खत्म हो चुकी है।
0: पर दुबे जी, इमोशन बहुत क्लियर है। संजय राउत जी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां गाली भी दी और कहा इसको कट मत करिए, जैसा है वैसा ही प्ले कीजिए। आप लोग बोलना चाहते हैं जो हो रहा है गलत हो रहा है, पर एक सीमा में।
1: हम वही कह रहे हैं ना कि देखिए, जो हो रहा है क्या ये किसी को अच्छा लग रहा होगा? अब हमें तो नहीं पता, बाकी लोगों को अच्छा लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा पता नहीं, बट लोकतंत्र में ये अच्छी चीजें थोड़ी है कि आप बार बार पार्टियों को तोड़े। एक बार आपने तोड़ा, चलो हमने कुछ नहीं कहा, हम फिर से नए चुनाव चिन्ह पे लड़े। अभी भी मामला कोर्ट में है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर हम जीत जाएंगे तो क्या होगा, तब जीत के क्या करेंगे? हमारा तो सब कुछ नष्ट हो गया ना, सब कुछ लॉस हो गया, अब उसका कौन भरपाई करेगा? तो बहुत सारी चीजें क्या गए
0: नहीं। पर दुबे जी, गाली देना कैसे उनको लगा कि ठीक है, क्योंकि ये इनको शोभा नहीं देता। सीनियर लीडर हैं, संजय राउत जी करते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स करते हैं, पर गाली देना सही है?
1: गाली वाली नहीं देना चाहिए, सिर्फ मुद्दों की बात करना चाहिए, जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब इसको गाली देके थोड़ी बताना है, प्रेम से बताना है, मुस्कुरा के बताना है, समझने वाले समझ जाएंगे।
0: पर इतने जर्नलिस्ट के सामने, सबके सामने वो बैठे हैं, सीनियर लीडर्स शिवसेना के बैठे हैं, वो गाली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं, शायद इमोशनल हो गए, बट वो कह रहे हैं नहीं आप इसको एडिट आउट मत कीजिए, यही हमारा भाव है, आप इसको ऐसे ही आगे बोलिए।
1: अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो गाली नहीं दे सकता, सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है बात करने की, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मन दुखा होगा इसके लिए, भावनाओं में बह गए होंगे, लेकिन उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं, हमें माफ करिए, हम लोग अच्छे लोग हैं, बट अभी थोड़ा वक्त खराब चल रहा है।
0: दुबे जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से वो क्लिप चलाएंगे संजय राउत का और फिर आपके पास वापस आएंगे।
2: पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे जे लोक कोण जात आहेत हे? नाही, डोंट कट, एकच मत करणार। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा।
0: दुबे जी, आपके पास फिर से आना चाहूंगी, आपने फिर से वो स्टेटमेंट सुना, ये शोभा देता है उद्धव ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे को, उनकी लेगेसी को? जिस तरह से संजय राउत बात कर रहे हैं, इतने जर्नलिस्ट के सामने, इतने माइक्स के सामने गाली दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं इसको कट मत कीजिए।
1: अब संजय राउत आप जानते हैं उनका, आज से नहीं बहुत दिनों से रहता है, लेकिन हम देखिए अभी बहुत दुखी है मैम, बहुत पार्टी जब कोई टूटती है। अब हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को क्या राज्यसभा कोई भेजेगा, क्या MLC हम बनेंगे, तो हम तो दुखी होते हैं, लेकिन हम कभी गाली गलौज नहीं कर सकते। तो सबकी अपना अपना है, क्या कहें, इससे ज्यादा तो कुछ कहने के मेरे पास शब्द नहीं है।
0: नहीं, पर अरविंद सावंत उनके साथ बैठे, वो हंस रहे हैं इस बात पर, किसी ने उनको रोका भी नहीं। अरविंद सावंत जी उनके साथ बैठे और हंस रहे हैं इस बात पर, आप क्लिप देखिए ध्यान से।
1: थोड़ा सा, चूंकि मैं वहां नहीं हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन हाँ अच्छे से बात कह सकते हैं, मुद्दों पे बात कह सकते हैं, तर्क पे बात कर सकते हैं। हमने चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को, हमने शायद समय भी मांगा है कि उनसे अपनी बात कह सके। हम तो प्रधानमंत्री जी से हस्तक्षेप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, आप इस देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे हैं, आप देखिए जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी पार्टी को बचा दीजिए। हम लोग 9 सांसद हैं, सुखी हैं, हम तो कोई सरकार में भी नहीं है, हम आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, तो आप हमारी पार्टी को तोड़ने से बचा दीजिए, यही हम उनसे गुहार लगा सकते।
0: जी दुबे जी, बने रहिए हमारे साथ। सरदार RP सिंह आल्सो जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। योर रिस्पॉन्स टू द वे दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वेंट, संजय राउत ओपनली अब्यूजिंग एंड देन टेलिंग ऑल द जर्नलिस्ट डू नॉट कट आउट द अब्यूज, दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई विल से, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट?
3: Well, there's the dark side of the Uddhav Thackeray party. There's the dark side of Mr. Sanjay Raut also. He's actually not a fair word, but he's not more than a clown in the pack, where he comes and speaks on and off without the knowledge of the subject. But fact is, this is very bad, and then that's how Sanjay Raut is. I mean, and then he has been speaking such foul language throughout, right from Kangana Raut case to now. His language has been that way, and then the chief of the Shiv Sena should, Mr. Uddhav Thackeray should sincerely think whether he should continue with such a person or not. Ultimately, marks the reputation of Mr. Uddhav Thackeray also.
0: Oh yes, absolutely. But you know, his men covering up on his behalf, saying that we are just emotional right now, and please excuse us in the manner that Sanjay Raut has spoken. But all the guns pointing towards the BJP, as Sanjay Raut goes on to say that these are MPs who've been bought for 15 crore rupees each. He's made explosive allegations and gone all out after the BJP.
3: Well, then he will have to face a defamation case if he has said so. And he has any proof, otherwise he has to give a proof for that, that any such transaction has happened. Because out of frustration, he's saying so. But again, whatever, however you might be frustrated, however you might be under pressure, you can't use such language in public domain, in public, in a press conference.
0: And, you know, even when asked about the dissenting MPs, why their fold is breaking, the clear response coming in from Sanjay Raut, they tried breaking us, our party, for the first time. We did not say anything. They're again attempting the same. And they're just walking over us and just flouting all forms of democracy.
3: The problem is that these regional parties, especially parties like Mamata Banerjee's TMC and Shiv Sena, Uddhav Thackeray, are family-led parties. Uddhav Thackeray party is what? Uddhav Thackeray, his son, and Sanjay Raut as a spokesperson. Is there anyone else who you see in his party who is a prominent face? The party doesn't come out of the family narrative, and that's why people feel suffocated. And whenever they get chance, they shift their loyalty, or they shift out of the party, or they form their own groups.
0: And will the BJP really act against it? Because he's literally writing it out. In fact, on Twitter last night, when he put out that post saying, Apna Sapna Money Money, it's shocking and revolting that Maharashtra MPs are reportedly being offered 15 crore rupees each tonight to switch sides. But go ahead.
3: I said he might face a defamation case on this. Our local BJP party from Maharashtra, we'll look into it, and he might face a defamation case for putting such charges without any evidence or without any concrete proof for it.
0: All right, Sardar R.P. Singh, I want to thank you for speaking to us this afternoon. The story is certainly getting bigger by the minute. BJP attacking Sanjay Raut over that remark, rather when he went on to abuse. And you heard that full statement as Sanjay Raut, who got emotional at first, but went on to abuse the rebel MPs, and then even told the media, do not edit out my abuse. That is the way I want it to go out. So do not edit anything out. But the brazen stance that he's taken on social media in that news conference, where he's in an all-out attack against the BJP. The BJP also hitting out, saying that this is the dark side of Uddhav Sena that has been exposed. Let's listen into both sides once again.
2: पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही. बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे जे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, एकच मत करणार. हा हे लोक जो है बेमान लोक है, ये बेमान है और बेमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है. मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा.
0: And there you heard that statement that has come in from Sanjay Raut, which has become the biggest flashpoint. He's going on to trade barbs against the BJP and pressing poaching charges against them. But in the meanwhile, this news conference that has gathered all the attention, where he went on to abuse the rebel MPs and told journalists, do not edit out any abuse. We're keeping a close eye on how the story is developing. We have to slip into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
4: Are watching India Today.
5: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
9: उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो MLAs हैं, जो MPs हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं
10: की। ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ही ऑपरेशन हो जाएगा।
11: So Apple WWDC 2026 has indeed come to a conclusion and lots of updates coming in for Apple users. The biggest of them all is the new Siri AI, which a lot of Apple users will definitely look forward to. Siri gets a completely redefined look and also becomes more contextual, more intuitive. Apple Intelligence also gets more closely knitted into the entire ecosystem, and that's something that Apple users will definitely appreciate because now Google's integration is going to make your overall experience much better. Some child control, let's say you have minors using Apple devices and also exposed to the Apple ecosystem, well, parents can control some of these features now and have a closer look of what their child is doing when they're using Apple ecosystem and devices. So these are some of the updates that have come in from WWDC 2026. But again, the biggest announcement is around how Apple Intelligence is now becoming smarter, more intuitive, and more useful for a lot of the users who are not only on the iPhone, but also across different devices. So yes, big updates coming in for all of the Apple users, and something to look forward to. Now, these features, as Apple said, will be rolled out in the coming months. It's not going to come immediately, but yes, developers will be able to test out some of the features and find bugs if there are any. So yes, I feel that this WWDC was more about polishing some of the existing features and making AI genuinely useful, and also making sure that the data that the users have stays protected, stays behind private cloud and also on the device, so that other, while they say that other AI devices can exploit your data, that's something that's not happening in the Apple ecosystem. So yes, big updates coming in from Apple WWDC 2026, and lots to look forward to for Apple users in the coming months.

0: The first reaction coming in of Member of Parliament of the Udhav Balasaheb Thackeray camp, Sanjay Raut. So there was a gully politics, a bit of anger and abuses. So there it is, anger, abuses in the agitation that's following. Sanjay Raut, now speaking to India Today, says have met the UBT Sena MPs, have met the Lok Sabha Speaker. Basically, so there is no rebellion. Let's listen in to what Sanjay Raut had said earlier. Arvind Sawant has also spoken to India Today. Let's listen in.
1: Sansad Sanjay Raut. Sanjay ji, aap log aaj mulaqat kiye hain speaker se. Kis vishay ke upar mulaqat ki aapne?
2: Humne ek letter diya hai speaker saab ko, cabinet. अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए तो गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
1: आपने ट्वीट किया कि पैसे का खेल हो रहा है, 15-15 करोड़ पे एडवांस दिए गए हैं, किनको दिए गए हैं?
2: इस देश में ऐसे मामले में क्या फूलों का खेल होता है, क्या फलों का खेल होता है? पैसों का ही खेल होगा ना।
1: तो आपकी पार्टी के जो सांसद हैं उनको एडवांस भेज दिया गया, आपका कहना है?
2: मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है ट्वीट में, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के सांसदों ऐसा कहा।
1: लेकिन आप यहाँ आए, आपने कहा ट्वीट के वजह से, इसलिए
2: देख लेंगे।
1: क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे इस पूरे खेल को कर रहे हैं और इस खेल के पीछे कौन होगा?
2: आप जिनका नाम ले रहे हो वो इतने बड़े आदमी नहीं है कि ये सब कर सके।
1: तो उन्होंने पहले किया इस,
2: वो क्या करेंगे, पावर है ना, सत्ता है और क्या है, हमारे पास होगी तो हम करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी का पालन करेंगे।
0: We will follow the democracy, and also saying that this is not really about the rebel MPs as much as alleging that there is a coup being initiated or attempted. However, remember, this follows what Sanjay Raut had said earlier this morning, a sort of anger, abuse that had come in, even then asking media persons deployed, do not edit out what I have said, referring to the abuse. Of course, as per guidelines, we're not going to air that abuse, but it reflected basically about what is unfolding in the UBD Sena, the anger over whether it's rumour mongering or in reality a rebellion. Let's then play out for you what did Sanjay Raut say specifically to India Today.
1: आप लोग आज मुलाकात किए हैं स्पीकर से, किस विषय के ऊपर मुलाकात की आपने?
2: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए वो गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
1: आपने ट्वीट किया कि पैसे का खेल हो रहा है, 15-15 करोड़ पे एडवांस दिए गए हैं, किनको दिए गए हैं?
2: इस देश में ऐसे मामले में क्या फूलों का खेल होता है, क्या फलों का खेल होता है? पैसों का ही खेल होगा ना।
1: तो आपकी पार्टी के जो सांसद हैं उनको एडवांस भेज दिया गया, आपका कहना है?
2: मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है ट्वीट में, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के सांसदों ऐसा कहा।
1: लेकिन आप यहाँ आए, आपने कहा ट्वीट के वजह से, इसलिए
2: देख लेंगे।
1: क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे इस पूरे खेल को कर रहे हैं और इस खेल के पीछे कौन होगा?
2: आप जिनका नाम ले रहे हो वो इतने बड़े आदमी नहीं है कि ये सब कर सके।
1: तो उन्होंने पहले किया इसलिए,
2: वो क्या करेंगे, पावर है ना, सत्ता है और क्या है, हमारे पास होगी तो हम करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी का पालन करेंगे।
0: This is very interesting. Sanjay Raut saying that it's not in Eknath Shinde's capability to initiate that coup. So is he referring that there is somebody else who has managed this coup, or at least is trying to have the rebel MPs? Even though Sanjay Raut clearly maintains that this is not Operation Tiger, most of their leaders are all with them. Nobody out of the 9 members of parliament of the UBT Sena, 7 were expected to defect, but he says all are together. Getting us that first big exclusive is Himanshu Mishra for the latest on this. अब हिमांशु जी एक चीज हमें बताइए कि जिस तरह इन्होंने ये कहा कि एकनाथ शिंदे तो ये नहीं कर सकते, तो क्या वो कह रहे हैं कोई और बड़ी पावर है जो ये सबको इनिशिएट कर रही है, या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी यूबीटी सेना में?
3: देखिए बिल्कुल जिस तरीके से संजय राउत ने कहा कि ये एकनाथ शिंदे नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको उनका इशारा साफ साफ जिस तरीके से उन्होंने कल देर रात जो है सोशल मीडिया पे ट्वीट किया और उसके बाद जो है उसमें उन्होंने लिखा ये पैसे जो है वो दिए जा रहे हैं, ये मनी का खेल है, 15-15 करोड़ पे एडवांस दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी सांसद का नाम नहीं लिया, इशारे इशारों में उनका इशारा जो है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी पे था।
0: Right, Himanshu Mishra getting us that big exclusive of Sanjay Raut. Also, he's spoken to Arvind Sawant. And what we are going to do is, I'm going to play out the other reactions of the UBT Sena members of parliament. They are still confident. They are still together, they say. Uddhav Camp loyalists speaking one by one to India Today. All big newsmakers here. But there's a lot of gali politics also happened. Let's listen in now to Arvind Sawant and Anil Desai.
4: हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे के अनिल देसाई। अनिल जी, आज आपने स्पीकर से मुलाकात की है, किस विषय को रखा है?
5: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुंचता है तो हमसे पहले
4: आपसे बात करें। लेकिन ये आपको शक हो रहा है कि क्या जो है आपकी पार्टी के 6 MP जो है वो टूट कर एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ जा सकते हैं?
5: नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमको पूरा विश्वास है हमारे एमपी हमारे साथ में, लेकिन अगर कोई बात ऐसे बनती है और मजबूरन उनको कुछ ऐसा करना पड़ता है तो हमने उसी लिए इनके पास लेकर
4: एक अंतिम सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जो है वो शिवसेना के स्थापना दिवस के 7 साल हो रहे हैं, ऐसे में आपको एक बड़ा झटका लग सकता है एकनाथ शिंदे की तरफ से? पहले भी एक आपको झटका लगा था, आपको मालूम है,
5: इसीलिए हमने सावधानी बरतने के लिए ही उनके पास में पहले से ये दिया हुआ।
6: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं अभी तो कानून मजबूरी सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आप देखा कि हमारी वहां भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता नहीं दे सकते।
4: और आपको लगता है कि उनको मर्जर करना पड़ेगा अंत में? अरविंद जी उनको आपको लगता है कि उनको मर्जर करना पड़ेगा?
6: कैसे कर सकते हैं
4: अरविंद जी? बस लास्ट सवाल है, कल क्या आपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई अपनी?
6: हमने कल कितने बजे सभी को बुलाया?
0: So that's what is happening. 9 members of parliament, some of them were expected to be arriving in Delhi, and that led to a certain whether confusion or rumor that they could be jumping ship. But for now, the UBT Sena has in fact targeted the ones who are either jumping ship or the ones who, according to him, are spreading rumors that it's happening, abusing them. Sanjay Raut has said that this is unacceptable. But he's also speaking to India Today exclusively, maintains that it's not in Eknath Shinde's ability to be able to initiate such a coup. It's not in his power. When Himanshu Mishra asked him who could possibly then do, he said it's not Eknath Shinde. Even previously, it's not him, but it is power. It is greed that's happening. So we'll continue to play out through the day about what Sanjay Raut has said, what Anil Desai and Arvind Sawant are saying. Now, remember, 9 members of parliament, very important number for the UBT Sena, because even though the Shiv Sena led by Eknath Shinde is in power in the government, however, with these 9 MPs, if Uddhav Thackeray isn't able to keep the flock together, it could become an existential crisis for Shiv Sena. So let's first listen in to what Sanjay Raut had said while sitting with Arvind Sawant. A little bit of an abuse there, which we have to beep out. And then what he said after meeting India Today's Himanshu Mishra.
7: Balasaheb Thackeray ne amala mulasarkha vadavlo sagalyanna. Ha? Uddhav Thackeray ne amchyavarti satatyana bhavasarkha prem kelo. He che loka, kon jatay he? Nahi, don't cut. Ekat mat karna. बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे चे लोक कोण जाताय हे? नाही, डोंट कट, एकट मत करणार. बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं.
8: की है ऑपरेशन टाइगर की चर्चा चारों ओर है। इस वक्त मसद बातचीत करने के लिए हैं शिवसेना यूपीटी के सांसद राजाबाबू वगैरह, और जो इस वक्त दिल्ली भी पहुंच चुके हैं क्योंकि कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होने वाली है और सभी सांसदों को कहा गया दिल्ली पहुंचने के लिए। सर, सभी सांसदों को कहा गया दिल्ली पहुंचने के लिए, आप भी आज दिल्ली आ?
5: नहीं, मैं आज इंडस्ट्री कमेटी की मीटिंग है इसलिए मैं वही मीटिंग के लिए आया था। अभी ये सब घटना घट रही है वो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज मैं आ गया हूँ।
9: आपकी इंडस्ट्री की मीटिंग
5: तीन बजे आज मीटिंग है।
9: आज मीटिंग है 3 बजे। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, ऑपरेशन टाइगर चल रहा है उसके बारे में बहुत चर्चाएं चल रही है, आप भी देख रहे होंगे हर जगह क्या क्या चल रहा है, आप भी गए थे संजय राव जी से मिलने के लिए, इन चर्चाओं पर आपकी क्या राय है?
5: नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो कहना है, मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है। मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ, रहूंगा।
9: उन्हीं के सिंबल पर चुनाव लड़े और जब तक आप सांसद हैं तब तक आप उनके साथ रहेंगे?
5: उनके साथ ही रहेंगे।
9: जो ये कहा जा रहा है कि कुछ सांसदों को फोन किया गया, 15-15 करोड़ रुपए दिए गए, क्या ऐसा आपने कहीं सुना?
5: नहीं, मेरे से किसी से आज तक बात हुई नहीं है, मुझे किसी ने ऑफर दिए नहीं है, मुझे कोई मिला नहीं है और न मैं किसी से मिला हूँ।
9: ना मिले ना कहीं आप जाने की इच्छा है आपकी? ये कहा गया एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि वही रियल शिवसेना है, वही छत्रपति शिवाजी और वही बाळासाहेब ठाकरे के प्रिंसिपल्स पर चल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है?
5: ठीक है, देखिए उनका कहना जो है उनकी जगह पे सही होगा, लेकिन मैं उद्धव जी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीत चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक धारणा है कि हम उनके साथ रहना चाहिए।
9: 9 में से 6 सांसद कहा जा रहे हैं कि उधर जाने के
5: नहीं है, मैं किधर नहीं जा रहा हूँ, मैं उनके साथ हूँ।
9: अच्छा, आपको कहीं कॉल, कोई फोन, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई अप्रोच
5: किसी ने
9: कहा कि आप दिल्ली आइए मुलाकात करिए कुछ?
5: किसी ने कहा नहीं मुझे, मैं आज इंडस्ट्री कमेटी के मीटिंग के लिए आया हूँ। अगर ये सब गड़बड़ मालूम होती तो मैं आता ही नहीं था ये मीटिंग।
9: अच्छा, आप इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहते?
0: We have a shocking news coming in from Gurugram. This is Delhi NCR, remember, and a luxury residential complex where there appears to be a horrifying case of rage and brutality. What exactly happened? We were told that an elevator lift reportedly stalled for about a few minutes and some young residents got trapped inside. By the time the lift operator who rushed to the spot, the lift had restarted and reached the ground floor. But what followed was shocking. Police says that an argument broke out, after which the youth, some of them apparently were trapped, and their associates who were called after, assaulted the operator, the lift operator, with sticks and rods. And worse, that this individual, who obviously will come when the lift would get stuck or there would be a call made, the injuries received to him were even to his eyes and other body parts. We had to blur out a little bit. He was rushed to hospital. Then he was shifted to All India Institute of Medical Sciences. One eye had to be removed. A damaged eye of this lift operator had to be removed. Why? Because according to some of these youths, that the lift operator did not arrive in time. The visual on your screen of him being beaten black and blue by these young men who... By then, the lift had restarted, so they were clearly in a fine condition. It's not that they had suffered. With this inconvenience, this individual permanently disabled. Do we blame the lift operator here? Or perhaps it was a technical glitch and some of the youth should have kept their patience? I want to immediately bring in Arvind Oja for the latest. Arvind, main agar situation samajhna cha rahi hu, pehle main ye janna chahti hu, jo ye young ladke the, ye kitni umr ke honge, kitni der ye phase, kya inke phasne se inko koi problem hui jo ye lift operator ko itni buri tarah peette chale gaye?
10: देखिए, लिफ्ट जो 9 जून को फंसी थी गुरुग्राम का सेक्टर 93 की एक पॉश सोसाइटी है, जिसमें 7th फ्लोर पर जो ये लड़के थे वो लिफ्ट चुकी में फंस गई थी, रुक गई थी, उसमें फंसे हुए थे। उसके बाद जो गौरव नाम का जो लिफ्ट ऑपरेटर था वो 7th फ्लोर पर जाता है, लेकिन जो लड़के हैं वो उनको निकालता है और उसके बाद फिर जो लड़के निकलते हैं उनका गुस्सा फूटता है और 3 से 4 लड़के जो सीसीटीवी उसमें दिखाई दे रहे हैं वो गौरव को बुरी तरह से मारपीट करने लगते हैं। गौरव को दिल्ली की एम्स अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उसकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, एक अक्यूज को अरेस्ट किया है, लेकिन सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि और भी लड़के थे जो गौरव की पिटाई कर रहे थे। अब सवाल यह है कि अगर लिफ्ट खराब हो गई, जो मोस्टली दिल्ली एनसीआर की सोसाइटी में इस तरह के इंसिडेंट आते हैं, तो क्या लिफ्ट खराब होने का गुस्सा लिफ्ट ऑपरेटर पर ऐसा निकाला जाएगा कि इतनी बुरी तरह से मारा जाएगा कि वो उसकी जो वो उसकी एक आंख खराब हो गई, फिलहाल उसका एम्स में इलाज करवाया जा रहा है।
0: पुलिस क्या कह रही है, क्या जो हमें वीडियो में दिख रहे हैं उनको इतनी बुरी तरह मार रहे पीट रहे हैं? क्योंकि लिफ्ट ऑपरेटर को इतनी बुरी तरह पीटने का मुझे तो कोई ऐसा रीजन समझ नहीं आ रहा। अगर वहां कोई बच्चा होता जो फंस गया था या किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो गुस्सा समझ भी आएगा शायद, लेकिन इस वक्त आप पुलिस से क्या बात कर रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, कंप्लेंट फाइल हुई है और क्या इन लड़कों के खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाएगा?
10: देखिए, पुलिस ने एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया था, लेकिन अब इंडिया टुडे के पास जो ये सीसीटीवी हमने एक्सेस किया है ये अब पुलिस को मिला है, तो पुलिस का कहना है कि अब अभी इसमें जो और अक्यूज सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। देखिए, गुस्सा अपनी जगह है, ये टेक्निकल फॉल्ट है जिसके जरिए लिफ्ट रुकती है, लेकिन गुस्से का मतलब ये नहीं कि किसी की पीट पीट कर वो किसी को इस तरह से पीटा जाए कि उसकी आंख खराब हो जाए, उस वो जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहे। तो गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन ये एक टेक्निकल फॉल्ट था, जांच में भी ये सामने आया। लेकिन अब जो कंप्लेन दी गई है उसके आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, बाकी अक्यूज्ड एब्सकॉन्डिंग है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है गुरुग्राम।
0: अरविंद, क्या ये बात आप कंफर्म कर सकते हैं कि इनकी एक आंख चली गई है इन लिफ्ट ऑपरेटर की, और क्या नाम है इनका? गौरव आप कह रहे हैं।
10: बिल्कुल, देखिए, ये जो लिफ्ट ऑपरेटर है गौरव, और जब ये लिफ्ट फंसी उसके बाद इसने काफी एफर्ट किया, 7th फ्लोर पर ये भागा, लिफ्ट को चालू कराने की इसने कोशिश की, और लेकिन जब लड़के निकलते हैं तब गौरव को बुरी तरह से मारा जाता है। जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस है, वो कह रही कि इनकी एक आंख बुरी तरह से खराब हुई है, ऑपरेट किया गया है, फिलहाल दिल्ली की एम्स अस्पताल में इनका इलाज कराया जा रहा है।
0: अरविंद, मुझे बताइए, दिल्ली एनसीआर में क्या आपको पिछले कुछ दिनों में, महीनों में ऐसे इंस्टेंसेस ज्यादा आ रहे हैं कि छोटी सी बात पर एक बड़ा ऑल्टरकेशन हो जाता है, मारपीट हो जाती है, मारने पे बात आ जाती है?
10: बिल्कुल, और खासतौर से दिल्ली एनसीआर की जो सोसाइटी है वो इस तरह के इंसिडेंट लगातार हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। गार्ड पर गुस्सा निकाला जाता है, सोसाइटी के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, आरडब्ल्यूए के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और खासतौर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो बीते कुछ महीनों में और कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरह से लिफ्ट खराब हो जाती है। जो सोसाइटी है उसमें मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं होता, लिफ्ट खराब हो जाती है, लेकिन लिफ्ट खराब होने की वजह से ऐसा गुस्सा तो पहली बार देखने को मिला है, और वो गुरुग्राम से आया जिसमें जो लिफ्ट ऑपरेटर है उस पर ही जो लोग है टूट पड़ते हैं और उसको बुरी तरह से लाठी डंडे से मारते हैं अपनी जान।
0: तो अरविंद, और ये मैं जानना चाहूंगी, ये गुरुग्राम से जो आप बता रहे हैं, यहाँ से अभी कुछ लोगों ने, कोई वहां के बाकी रेजिडेंट्स कुछ कह रहे हैं, वहां पे अभी चुप्पी है?
10: नहीं, देखिए, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी मानते हैं कि ये जो जो जिस तरह से गौरव की पिटाई हुई है वो भी गलत है, और इस वजह से फॉर्मली कंप्लेंट दी गई है, और उसके बाद फिर गुरुग्राम पुलिस ने लिया है। अब ये जो सीसीटीवी एक्सेस किया उससे गुरुग्राम पुलिस को ये पता चला है कि इसमें कुछ और भी लड़के थे जिन्होंने गौरव के साथ मारपीट की थी, अब उनको अरेस्ट करने की कोशिश पुलिस कर रही है। पूजा,
0: अरविंद, अगर आप हमारे साथ बने रहे, बिकॉज आई जस्ट वांट टू ब्रिंग टू द व्यूअर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, एंड रिमेंबर दिस कैन हैपन टू एनीवन दैट यू मे बी इन एन एलिवेटर, यू मे बी इन अ लिफ्ट एंड मे गेट स्टक बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच। दिस वाज एट ऑर्चर्ड एवेन्यू सोसाइटी इन गुरुग्राम, 9th June. There were some men, young men, who got trapped inside for a few minutes. That may happen. So what is the next step? An emergency button is pressed. The lift operator, possibly on duty at that point, his name is Gaurav, he rushes to help in. Now, this lift is stuck on the 7th floor. So the operator reaches on the 7th floor, which clearly means most likely has taken the stairs. By then, the lift has started to come down, or it has restarted for some reason. The operator runs then to the ground floor. He has the door open. These young men come out. He's assisting, helping to ensure it's working. But an argument breaks out between these men and the operator, possibly asking where was he, why was the lift not starting in time. Then they start, not one, not two, but possibly more. They start to assault this lift operator. and assaulting him in a manner that he suffers such grievous injuries that one eye has been damaged, possibly permanently, is what doctors are telling us. He's been rushed to a hospital, first a closer hospital to Gurugram, then later shifted to All India Institute of Medical Sciences in Delhi. And then it shows us, was this worth a man losing his eye? He was on duty, rushed to duty, but clearly some young men of this society in Gurugram were not too happy about it. I want to thank Arvind Oja for that big story. I'm heading to a very short break. It's UBT MP, angry and abusive over Operation Tiger. We get you more on what exactly happened, what did Sanjay Raut say, and what did he say then to India Today later.

0: in Maharashtra being carried out under the leadership of Eknath Shinde, who himself, of course, had broken the Shiv Sena first in 2022. Mr. Shinde has been in touch with a lot of these MPs. In fact, this operation has been in the making for more than 6 months. The original plan was to do this in the first week of July. It was expedited because Uddhav Thackeray held a meeting on Sunday where he tried to bring at least half a dozen MPs on his side. When he failed in that context, the Shinde Sena MPs decided to accelerate the process. But there is no one factor. But money is a big factor. Whether one likes it or not, the funding factor has become more and more critical. And that is why questions will be raised as to the manner in which these defections are being organized. Sanjay Raut, of course, is throwing all kinds of numbers. None of them can be proven. But the truth of the matter is there is some dam dand bhed politics that's going on in Maharashtra at the moment.
1: Rajdeep, on a lighthearted note, I have to ask you this question. You know, this is not about just switching a job from one organization to another. This is ideological. This is about loyalty. And I know many people on, for example, on social media or the dining table conversation is, do these politicians have no loyalty? What do you make of that? That I understand if there's an operation, there's greed for power or there is pressure, but eventually one has to stay true to ideology as well.
0: You see, there are question marks over what is the ideology. Let's not forget, Uddhav Thackeray for the longest time was with the BJP and then broke with the BJP to join hands with the Congress. So the entire ideology of the Shiv Sena, which was seen to be based or revolved around Hindutva and the persona of Baalasaheb Thackeray, collapsed the moment Eknath Shinde, the moment that Uddhav Thackeray decided to break with the BJP. So the BJP thought that now it is fair game to target their ally. They wooed Eknath Shinde, who in turn has now wooed these MPs. One of the reasons, of course, for the urgency, let's not mask that, is the fact that in the monsoon session of Parliament next month, the BJP wants to, is hoping to have a two-thirds majority so that they can pass the delimitation bill along with women's reservation. So that was one of the reasons for the urgency. But ideology really now really matters given the fact that everyone, in a sense, is up for sale and has a price.
1: And that's sad indeed. But, of course, a developing story. We'll continue to track what happens in Maharashtra now. The biggest newsmaker this morning has been Sanjay Raut. And here in an exclusive conversation coming up now with Maria Shakil.
2: क्यों दे दो मुझे क्यों दे दो स्टार्ट
3: हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन वी हैव द बिगेस्ट न्यूज मेकर amidst this entire crisis playing out in Shiv Sena Uddhav Thackeray faction. Someone who understands Uddhav Thackeray very, very closely, has worked very closely with him, perhaps one of the most trusted lieutenants of Uddhav Thackeray, Sanjay Raut, Member of Parliament, is joining us here. Sanjay Raut ji, thank you for speaking to India today. Namaskar. Let me begin with what you have said in the press conference that you held just a couple of hours ago. Resign and go. Who are you telling this? कौन किसको आप बोल रहे हैं कि रिजाइन करके चले जाओ?
4: देखिए, तृणमूल कांग्रेस के भी हो सकते हैं, जिस तरह से 20-22 सांसद उनके ममता बैनर्जी के नाम पर, उनके पार्टी के आइडियोलॉजी पर चुनकर आए और एक बार चुनाव हार गए तो भाग गए. आपको भागना है तो भाग जाइए, लेकिन जिस पार्टी ने, जिस होटल ने आपको चुन कर दिया है, आप उनके साथ दगाबाजी क्यों कर रहे हो? आप इस्तीफा दीजिए और जहां जाना है वहां से चुनाव लड़िए. वैसे ही मुंबई में, महाराष्ट्र में, आम आदमी पार्टी में, आप कोई भी किसी को कहां से भी किडनैप कर लेता है. डेमोक्रेसी में ये किडनैपिंग है.
3: लेकिन बहुत सारे सांसद तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं.
4: नहीं, कोई नहीं मर्जी से जाता है. मर्जी से कोई जाता नहीं. मर्जी से चुनाव हमारे पार्टी में आप लड़ते हो ना? चुनाव आप अपने मर्जी से हमारे पास आकर, हमारा उम्मीदवार बनकर, हमसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते हो. आपने पैसा खर्च कर रहे हो, पार्टी दे रही है आपको पैसा, दे रही है उम्मीदवारी चुनाव का नॉमिनेशन दे रही है, पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पार्टी के नेता चाहे हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जी और हम सब लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, हाँ 25-25 दिन बाहर रहते हैं हम लोग, और बाद में आप हमारी मर्जी से जा रहे हो, कौन सी मर्जी? डेमोक्रेसी में मर्जी है आपकी, अगर आपकी आप अपने मर्जी के मालिक है तो पार्टी ने आपको जो पद दिया है, चाहे विधायक हो या एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कॉरपोरेटर हो, आप इस्तीफा दीजिए, आपकी मर्जी।
3: लेकिन अभी खबर आ रही है संजय रावत जी कि लगभग 9:30 बजे आज ही इन लोगों ने करीब 6 जो सांसद हैं आपके, 9 टोटल हैं, उसमें 2/3 उन लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है कि वो लोग अलग हो रहे हैं।
4: हम लोग के मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि अगर ये 6 लोग हैं तो 6 लोग लोकसभा स्पीकर के सामने जाकर खड़े होने चाहिए। आप कोई किसी के भी सिग्नेचर लेके जाएंगे और बोलेंगे 6 है, अभी हम कल 10 सिग्नेचर लेके जाएंगे किसी और के, ये 10 लोग हमारे साथ आने को तैयार
3: बोल रहे हैं, वो फॉल्स सिग्नेचर्स है।
4: देखिए हमारा एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अस्टिकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है,
3: उन्होंने आशंका जताई थी।
4: हाँ हमको बताया। और दूसरे हमारे संजय दिना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई तो उसने
3: अभी
4: कहा,
3: बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया,
4: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है। कल हमने एक व्हिप जारी किया है, पार्टी ने एक व्हिप जारी किया, कल हमने हमारे पार्लियामेंट्री दल की बैठक बुलाई है कल 11 बजे, कल पता चलेगा व्हिप का पालन कौन करता है या व्हिप को उल्लंघन कौन करता है, तुरंत एक्शन ले लेंगे हम।
3: तो रियल टेस्ट
4: कल है,
3: कल है,
4: यस।
3: अभी तक लोकसभा स्पीकर ने जब आपने मुलाकात की, आप गए थे, आपके साथ अरविंद सावंत गए थे, आप लोग सब मिल करके गए थे अभी लोकसभा स्पीकर के पास, तो उनको आपने क्या कहा?
4: हमने जाकर स्पीकर साहब से कहा कि हम बोल नहीं सकते सच है या झूठा, लेकिन खबर चल रही है कि हमारे पार्टी से, पार्लियामेंट्री पार्टी से कुछ लोग टूटकर एक अलग गुट बनाना चाहते हैं और आपके पास आने वाले हैं, तो ये मैंने हमने सुना है,
3: ये बोला आपने?
4: हाँ ये हमने सुना है, हमारे पास अब तक कोई ऑफिशियली किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको इन्फॉर्म करें, अगर ऐसी कोई ग्रुप आता है हमारे अप्रोक्ष
3: जी,
4: तो हमारा ये लेटर आप लीजिए, हमने उसमें सब कानूनन जो प्रावधान है उसमें दिए हैं, और सबसे पहले आप हमें बताइए, हम पार्टी है ओरिजिनल, और हम इतना ही आपसे चाहते हैं कि जो नियम कानून और संविधान और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, बस आप उसका पालन कीजिए और कुछ नहीं कीजिए, बस इतना ही कहा।
3: संजय राव जी, आपने एक ट्वीट किया था रात में,
4: हाँ,
3: अपना सपना मनी मनी है ना, और ये भी कहा था कि 15 करोड़ ऑफर किया जा रहा है स्विच करने के लिए,
4: दे दिया पैसा
3: नहीं, लेकिन सवाल है कि आपके सांसद ले रहे हैं, कौन ले रहा है?
4: मैंने कहा, बोला कि मेरे सांसद ले रहे हैं, हमारे सांसद ले रहे हैं,
3: आपने कहा ऑफर किया जा रहा है,
4: आप पूरा ट्वीट पढ़िए, मैंने महाराष्ट्र के सांसद के बारे में कहा है,
3: महाराष्ट्र के
4: कुछ एमपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आज रात को उन्हें 15-15 करोड़ रुपया उनके घर में
3: आज दिया जाएगा, बोल
4: कल रात को,
3: अच्छा
4: जब तक ये पैसा नहीं मिलता है तब तक कोई चार्टर फ्लाइट में नहीं बैठेगा, सबके चुनाव क्षेत्र में चार्टर फ्लाइट खड़े थे कल,
3: बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप,
4: और ये मैंने चार्टर फ्लाइट का फोटो भी आज दिया है, और ये 3 चार्टर फ्लाइट कल दिल्ली में उतर भी गए, एक पुणे से है, एक नांदेड़ से है, एक नागपुर से है, ये 3 चार्टर फ्लाइट है,
3: और इसमें महाराष्ट्र के एमपीज आए,
4: महाराष्ट्र के एमपीज आ गए, पैसा
3: तो वो उद्धव ठाकरे
4: पैसा
3: फैक्शन के हैं जो आपके साथ थे,
4: पता चलेगा किसके है ये, पता चलेगा, लेकिन पैसा मिला सांसदों को 15-15 करोड़ इन एडवांस, 50-60 करोड़ का डील है और उसका 15 करोड़ जब उनके हाथ में मिल गया तब वो फ्लाइट में बैठ गए और आ गए.
3: बट आंट यू कंसर्न सर दैट इफ दीज आर योर एमपीज, योर यूबीटी सेना फैक्शन एमपीज, देन यू हैव नॉट मैनेज्ड टू कीप योर हाउस इन ऑर्डर. आपका अपना घर सही नहीं है, जब उसमें लोग नहीं है.
4: जब हमारे पास ईडी सीबीआई पुलिस होगी तो और भी पार्टियों का घर मैनेज नहीं हो पाएगा. मैं आपको बताना चाहता हूं ये कोई घमंड की बात नहीं कि हम किसी की पार्टी तोड़ रहे हैं. आप ये सब जो है ना आपकी कवच कुंडले हाँ प्रोटेक्शन ईडी सीबीआई का वो निकाल दीजिए और सामने आ जाइए हमारे. हम फिर दिखाते हैं कौन कितना पानी में है जमीन पे है, हम दिखा देंगे. ये तो कोई भी कर सकता है इस प्रकार से. अगर मेरे पास इस प्रकार की एजेंसी हो और मैं किसी के ऊपर दबाव डाल सकता हूं. लोग डरते हैं, सब लोग हमारे जैसे नहीं होते, जो होगा वो देखा जाएगा. लोग डरते हैं बेचारे. अब आपको बताता हूं हमारे एक एमपी है जिनका नाम है ओम राजे निंबाळकर. हम उनको ऐसा बच्चा था, उनको पहले एमएलए बनाया उद्धव जी ने, पार्टी ने दो बार का तीन बार का एमपी बनाया. अभी मैं क्या बोल रहा हूं, उसके पिताजी का 20 साल पहले मर्डर हो गया उसके पिताजी का पवन ओम राजे निंबाळकर का. भर सड़क पर उसकी गोली मारी और उसमें नाम आया उस वक्त के जो गृह मंत्री पदम सिंह पाटिल जी का, बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता है वो. ये उनके अंकल है, भाई उनके भाई थे. 20 साल तक ये कानूनी लड़ाई चलती रही और ये लड़का हमारे पार्टी में आया, हमारे पार्टी से एमएलए बन गया. कौन उसको बनाता है एमएलए, कौन उसको बनाता है एमपी तीन बार. अब कल उनका फैसला था, 20 साल के बाद कल वो डेट बोर्ड पर आ गई हाईकोर्ट के. अब फैसला है आज और ये पवन राजे को मैसेज दिया गया एक पार्टी के प्रमुख नेता के तरफ से, अगर फैसला तुम्हारे हक में चाहिए तो हमारे पार्टी में आ जाओ, तुमको फैसला मिल जाएगा. और कल वो डेट आगे चली गई.
3: ये पूरा बिल्डअप ये कहा जा रहा है दैट इज इट इज लिंक्ड टू योर फाउंडेशन डे व्हिच इज ऑन 19.
4: तो दबाव किस प्रकार से होता है, ये दबाव का ये भी ऐसे कारण है. तुम्हें हाईकोर्ट का फैसला तुम्हारे मर्जी के मुताबिक मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा, आपके बाप का मर्डर का बारे में जो फैसला है.
3: यू आर सेइंग दैट इवन जुडिशरी इज इन्वॉल्वड हियर.
4: जुडिशरी कहां इन्वॉल्व नहीं है, चार साल से हम लोग तारीख पे तारीख ले रहे हमारे केस में. हाँ 10th शेड्यूल के बारे में हम दीवार पर हमारा सर फोड़ रहे हैं 10th शेड्यूल के बारे में. सुनवाई होती है क्या, पांच चीफ जस्टिस बदल गए लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है.
3: 19th इज योर फाउंडेशन डे.
4: 60 साल
3: होगा पार्टी को, उस दिन शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा.
4: होने दो,
3: आपकी पार्टी के अभी 20 एमएलए हैं असेंबली में, एक आप राज्यसभा में, 9 लोकसभा में, लेकिन वो भी है कि संभावना है कि वो कुछ और एक फैक्शन बन सकता है जो चर्चा चल रही है. ये लेगेसी की भी लड़ाई है सर.
4: लेगेसी की लड़ाई शिंदे के पास जाएगी क्या, उद्धव ठाकरे को जन्म दिया बालासाहेब ठाकरे ने पार्टी को. बालासाहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे जी को उस वक्त पार्टी का चीफ बनाया, तो हम भी फॉलो करेंगे. पार्टी तो ऐसे ही चलेगी हमारी. इतना शिंदे फैक्शन किया, ये तो अमित शाह साहब की पार्टी है, अजित पवार की पार्टी, अमित शाह साहब की पार्टी है. अमित शाह जी ने पार्टी बनाई, मोदी जी ने ये दो पार्टी बनाई महाराष्ट्र में.
3: लेकिन जनता ने उनको फिर से जिताया है, मैंडेट दिया है.
4: हम उसको मैंडेट नहीं मानते भाई. मैंडेट ये नहीं होता है ना, इस तरह से आप लोकसभा में मैंडेट दिया हमको और 3 महीने में मैंडेट दिया ये लोगों को. ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया 3 महीने में. जो बात पश्चिम बंगाल में हो गई वही बात महाराष्ट्र में हो गई.
3: तो यही मेरा सवाल
4: आप है. पूरा चुनाव हैजाक कर लेते हो और चुनाव जीत लेते हो.
3: ये मेरा सवाल होगा कि अब इंडिया ब्लॉक का क्या होगा. आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ वो हम लोगों ने देखा, तृणमूल कांग्रेस का एक सिग्निफिकेंट चंक 2/3 जाके एनसीपीआई से मर्ज कर जाता है. असेंबली में भी वो टूट करके एलओपी बन जाता, एलओपी का दर्जा ले लेते हैं. आप लोगों के साथ भी अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर है?
4: ये लोग करते रहेंगे, देखो ये लोग करते रहेंगे, जब तक ये करते रहेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमारे में आज भी अगर आप में हमारी पार्टी तोड़ने की क्षमता आप रखते हैं एजेंसी का मिसयूज करके, तो हमारे जैसे लोग भी आज भी इस छल कपट से लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम लड़ेंगे।
3: इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर है?
4: इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर अच्छा है राहुल गांधी जी की लीडरशिप में। बात ऐसी है कि देखो कोई पार्टी तोड़ने से पार्टी खत्म नहीं होती ना। हमारी पार्टी है वो थोड़ी एमपी एमएलए बनाने के लिए बनी है। लोग आते हैं लोग चले जाते हैं ना। 60 साल में पार्टी टूटी है, नारायण राणे चले गए, एकनाथ शिंदे चले गए, छगन भुजबल चले गए, राज ठाकरे चले गए। पार्टी है, पार्टी रहेगी, कभी कम ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, और नए लोग चुनकर लाएंगे हम।
3: आपका कहना है कि जो 6 नाम चल रहे हैं कि इन लोगों ने लोकसभा स्पीकर को अपना नाम सिग्नेचर के तौर पर दे दिया है कि वो उन लोगों को सेपरेट फैक्शन के तौर पर देखा जाए, उसमें से 2 सांसद जिनका नाम आपने लिया वो आपके साथ अभी भी संपर्क में है?
4: डेफिनेटली। बात ऐसे कि अभी हम जब ओम बिरला साहब से मिले तो मुझे नहीं लगता है कि अब तक किसी ने उनके पास इस प्रकार का लेटर दिया है।
3: दैट्स द सेंस दैट यू गॉट?
4: ऐसा मुझे लगता है, उनसे जब मैंने बात की तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमारे लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं उनके पास कोई जाकर इस प्रकार का क्लेम करके आए हैं कि हम अलग गुट बनाने जा रहे हैं। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है। जब मैं बिरला साहब को जानता हूँ बहुत नज़दीक से और वो खुलकर बात करने वाला आदमी है, हमने बहुत सी बातें बिरला साहब से की, लेकिन मुझे उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई हमारी, मुझे ये महसूस नहीं हो गया कि उनके पास जाकर किसी ने ये क्लेम किया है अब तक, अभी तक।
3: ओके, एंड यू आर सेइंग दैट द रियल टेस्ट विल बी टुमारो, क्योंकि आपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई है, एंड दैट विल बी हैपनिंग
4: डेफिनेटली। कल हम 11 बजे सबका इंतजार करेंगे, सबका स्वागत करेंगे, सबके लिए खाना पीना सब रखा है, इंतजाम है पूरा, आप आइए खाओ आप।
3: और उसी वक्त पता चलेगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन में कौन है।
4: आपने कल तक हमारा नमक खाया है, कल 11 बजे भी खाइए।
3: चलिए, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे सर।
4: थैंक यू।

0: ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ये पार्टी है, मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं चुनकर आए हैं। ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी और बाळासाहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया, नांदेड़ से, पुणे से, तीन जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़ा।
1: सी द कांग्रेस गवर्नमेंट इटसेल्फ इज डूइंग ए रियल एस्टेट नाउ, टेकिंग दिस 7,000 acres ऑफ fertile land of the farmers, that too the costliest land, about 15 to 20 crore rupees per acre. See, this government is going to acquire that land in the name of township. It is totally a real estate business, so that our party is against to this move.

0: अभी तक तो मैं मानता हूं सब साथ है, हमारा दल एक है। अभी तक कोई किस प्रकार का किसी ने लेटर दिया है या नहीं दिया है आपके माध्यम से हम लोग जान हमको इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये रविवार को 14 तारीख को हमारी सभी सांसदों की एक मीटिंग मातोश्री पर उद्धव जी के नेतृत्व में हो गई। हम सब वहां थे, वहां हमारे चार सांसद प्रत्यक्ष अरविंद जी थे, अनिल जी थे, राजा भाऊ वाजे नासिक से थे और मुंबई से संजय जिना पाटिल थे और बाकी जो चार पांच छह लोग थे वो ऑनलाइन वर्चुअली थे। वो सभी ने उस वक्त कहा दो दिन पहले कि मैं हम लोग पार्टी के साथ ही है, हम उद्धव जी आपके साथ है, हाँ हम आपको छोड़कर कहां जाएंगे। और उसमें से एक दो सांसद है उसने चार बार साईं बाबा की शपथ ली, एक ने माता भवानी की शपथ ली, एक ने मां और बेटी की शपथ ली, हाँ एक ने बार बार अपने मां की शपथ ली। और उसके बावजूद अगर कोई साईं बाबा माता भवानी मां की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसे अपने मां से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना मां है हम सब, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जो चाहे वो करने कर लीजिए।
1: You have stirred a big controversy by writing this open letter to the RSS chief Mohan Bhagwat asking that the RSS register itself, disclose its financial details, its taxation systems. Are you in a sense spoiling for a fight with the Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mr. Kharge?
2: Firstly, Rajdeep ji, I don't know how is it called a controversy, number one. And how am I itching for a fight when I'm just doing my job? And in my letter, it's very clearly stated that it is based on a report by the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha, which is the highest decision-making body of the RSS. And they have released a 2025-26 report, which says that they have an extensive footprint in Karnataka. They have 4,127 daily shakas. They have 1,389 weekly milans and over 60 monthly mandalis. And they say that they have had more than 2,194 samajotsavas where over 20 lakh people have participated. They have had over 562 route marches in Karnataka, covering up to 3 kilometers with close to around 2.2 lakh people participating in uniform. And this does not by any way look like it is a very random organization doing things. It looks completely focused. It is completely cadre-based. And more importantly, when more than 20 lakh people are coming together under the name of an organization, isn't it the responsibility of mine to understand who these people are, what they do, right, why they do it, and where are they getting the funding from?

0: what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: उसमें से एक जो सांसद है उसने चार बार साई बाबा की शपथ ली, एक ने माता भवानी की शपथ ली, एक ने माँ और बेटी की शपथ ली, हाँ, एक ने बार बार अपने माँ की शपथ ली। और उसके बावजूद अगर कोई साई बाबा, माता भवानी, माँ की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसे अपने माँ से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना माँ है हम सब, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जो चाहे वो करने कर लीजिए।
2: उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर, उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं
3: किया। ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो सात सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ही ऑपरेशन हो जाएगा।

0: ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ये पार्टी है, मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं चुनकर आए हैं। ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी और बाळासाहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया, नांदेड़ से, पुणे से, तीन जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े।
1: आप एग्जैक्टली कोट कर सकते हैं कि किसने कैसा?
2: देयर आर सो मेनी अनरजिस्टर्ड थिंग्स गोइंग ऑन एंड वी आर नॉट सिक्रेटिव, वी आर वर्किंग ऑन ओपन ग्राउंड, वी आर कॉलिंग पीपल एंड टेलिंग देम अबाउट संघ। दिस इज पॉलिटिक्स एंड ऑल दीज थिंग गिमिक्स आर बीइंग ट्राइड, डू दैट, वी आर यूज टू इट। आफ्टर से 10-15 years ऑफ स्टार्टिंग ऑफ संघ वी हैड टू फेस ऑल दीज थिंग्स, वी आर यूज टू इट। इफ दे डोंट हैपन वी फील समथिंग इज अमिस। दे वॉन्ट टू इन सम वे ऑन वन साइड हैम्पर द संघ वर्क, ऑन साइड क्रिएट डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल, बट दैट इज नो मोर पॉसिबल बिकॉज पीपल नो अस। दे से वी आर सिक्रेटिव, अवर कार्यकर्ताज लिव इन ऑल लोकेलिटीज, पीपल आर डेली सीइंग देम, अवर शाखाज आर इन ओपन ग्राउंड, पीपल आर डेली सीइंग देम, वी हैव पब्लिक प्रोग्राम्स, वी हैव सच ए एनॉर्मस आउटरीच इन दिस ईयर।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
5: What you got for me, Jack?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: Resign and go. Who are you telling this? कौन किसको आप बोल रहे हैं कि resign करके चले जाओ?
7: देखिए, तृणमूल कांग्रेस के भी हो सकते हैं, जिस तरह से 20-22 सांसद उनके ममता बैनर्जी के नाम पर, उनके पार्टी के आइडियोलॉजी पर चुनकर आए और एक बार चुनाव हार गए तो भाग गए। हाँ, आपको भागना है तो भाग जाइए, लेकिन जिस पार्टी ने, जिस होटल ने आपको चुन कर दिया है, आप उनके साथ दगाबाजी क्यों कर रहे हो? आप इस्तीफा दीजिए और जहां जाना है वहां से चुनाव लड़िए। वैसे ही मुंबई में, महाराष्ट्र में, आम आदमी पार्टी में आप कोई भी किसी को कहां से भी किडनैप कर लेता है। डेमोक्रेसी में ये किडनैपिंग है।
6: लेकिन बहुत सारे सांसद तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं।
7: कोई नहीं मर्जी से जाता है, मर्जी से कोई जाता नहीं। मर्जी से चुनाव हमारे पार्टी में आप लड़ते हो ना, चुनाव आप अपने मर्जी से हमारे पास आकर, हमारा उम्मीदवार बनकर, हमसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते हो, अपने पैसा खर्च कर रहे हो। पार्टी दे रही है आपको, पैसा दे रही है, उम्मीदवारी चुनाव का नॉमिनेशन दे रही है, पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पार्टी के नेता चाहे हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जी और हम सब लोग आपके लिए मेहनत करते हैं। हाँ, 25-25 दिन बाहर रहते हैं हम लोग, और बाद में आप हमारी मर्जी से जा रहे हो। कौन सी मर्जी? डेमोक्रेसी में मर्जी है आपकी। अगर आपके आप अपने मर्जी के मालिक है तो पार्टी ने आपको जो पद दिया है, चाहे विधायक हो या MLA हो, चाहे MP हो, चाहे कॉरपोरेटर हो, आप इस्तीफा दीजिए, आपकी मर्जी।

0: लगभग 9:30 बजे आज ही इन लोगों ने करीब 6 जो सांसद हैं आपके, 9 टोटल हैं, उसमें 2/3 उन लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है कि वो लोग अलग हो रहे हैं।
1: हम लोग के मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि अगर ये 6 लोग हैं तो 6 लोग लोकसभा स्पीकर के सामने जाकर खड़े होने चाहिए। आप कोई किसी के भी सिग्नेचर लेके जाएंगे और वो लेके 6 है, अभी हम कल 10 सिग्नेचर लेके जाएंगे किसी और के, ये 10 लोग हमारे साथ आने को तैयार
0: बोल रहे हैं वो फॉल्स सिग्नेचर्स है।
1: देखिए, हमारा एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अस्टिकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है,
0: उन्होंने आशंका जताई थी।
1: हाँ, हमको बताया। और दूसरे हमारे संजय दिना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
0: अभी
1: कहा,
0: बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया।
1: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूं, मैं पार्टी के साथ हूं। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे, हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है। कल हमने एक व्हिप जारी किया है, पार्टी ने एक व्हिप जारी किया, कल हमने हमारे पार्लियामेंट्री दल की बैठक बुलाई है, कल 11 बजे, कल पता चलेगा व्हिप का पालन कौन करता है या व्हिप को उल्लंघन कौन करता है, तुरंत एक्शन ले लेंगे हम।
0: तो रियल टेस्ट
1: कल है,
0: कल है,
1: यस।
2: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله لا اشهد ان لا اله الا الله الله الرحمن الرحيم.
3: A young woman pleads them to let go.
2: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق اشهد ان محمد رسول الله.
3: But the men around her continue what she alleges was a forced religious conversion ritual. This viral video is now at the heart of a sensational case being investigated by Nagpur police. The survivor, a 24-year-old woman, the wife of an Indian Air Force officer, alleges that her former classmate, Ayaz Taj, first approached her under the pretext of buying a property plot. She alleges she was given an intoxicating substance, sexually assaulted, and filmed without her consent. The accused allegedly used those videos to blackmail her, repeatedly exploit her, and extort over 3 lakh rupees. The woman further alleges she was taken to a secluded location where rituals were conducted and she was told that her religious conversion into Islam had been completed. Police say the viral video submitted by the complainant is being verified as evidence. 2 accused, Ayaz Taj and Amin Sheikh, have been arrested, while a 3rd accused, Hazrat Maulana, remains absconding. Meanwhile, Vishwa Hindu Parishad called it a case of love jihad and demanded thorough investigation. As police examined the video and other evidence, the case has sparked serious questions whether multiple illicit conversion rings are getting free run across many parts of India. Bureau Report, India Today.
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: भाजपा का धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा, सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं।
1: उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं।
2: ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ही ऑपरेशन हो जाएगा।
3: So Apple WWDC 2026 has indeed come to a conclusion and lots of updates coming in for Apple users. The biggest of them all is the new Siri AI, which a lot of Apple users will definitely look forward to. Siri gets a completely redefined look and also becomes more contextual, more intuitive. Apple intelligence also gets more closely knitted into the entire ecosystem, and that's something that Apple users will definitely appreciate because now Google's integration is going to make your overall experience much better. Some child control, let's say you have minors using Apple devices and also exposed to the Apple ecosystem, well, parents can control some of these features now and have a closer look of what their child is doing when they're using Apple ecosystem and devices. So these are some of the updates that have come in from WWDC 2026. But again, the biggest announcement is around how Apple intelligence is now becoming smarter, more intuitive, and more useful for a lot of the users who are not only on the iPhone but also across different devices. So yes, big updates coming in for all of the Apple users and something to look forward to. Now these features, as Apple said, will be rolled out in the coming months. It's not going to come immediately, but yes, developers will be able to test out some of the features and find bugs if there are any. So yes, I feel that this WWDC was more about polishing some of the existing features and making AI genuinely useful, and also making sure that the data that the users have stays protected, stays behind private cloud and also on the device, so that other AI devices can exploit your data. That's something that's not happening in the Apple ecosystem. So yes, big updates coming in from Apple WWDC 2026 and lots to look forward to for Apple users in the coming months.

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: सब कुछ किया और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठे। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर उसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई तीन तीन चुनाव हार गए थे उनको एमपी बनाया, कोई कहां भाग गया था घर में बैठा था उसको एमपी बनाया, किसी को किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है, अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम आप दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी, आप जरा बताइए।

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: Hello and welcome. You're watching India Today and I'm Jessica Goel bringing you the top news of this hour. Let's begin with the headlines. Prime Minister Modi, US President Trump hold bilateral meet at the sidelines of G7 summit. PM Modi speaks out on death of Indian sailors. Trump shrugs off, says it's a rough profession. Center versus Telegram at Delhi's High Court's doorstep. Ahead of re-need, Telegram claims order passed without application of mind. High Court observes high level of illegal activity on platform. Center seeks time till tomorrow to respond. Leader of opposition Rahul Gandhi holds echo of students rally in Kota over paper leaks, says India's education system subjects its children to stress, pressure which is not good for country. After TMC, Sena UBT likely to split, Uddhav's close aides meet LS Speaker, summit caveat letter. While speaking with India Today, Sanjay Raut says Rs 15 crore offered to MPs to defect. Shinde Sena dismisses Operation Tiger charges. Big claim by UP Minister OP Rajbhar says SP is heading for a major split. Many leaders to join BJP. SP Chief Akhilesh Yadav denies charge, says party is united but slams BJP for poaching attempts in the past. Speculations have turned into a full-blown crisis. Speculations of a fresh rebellion inside Uddhav Thackeray's Shiv Sena UBT have intensified today. According to sources, six Sena UBT MPs have sent a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla this morning seeking to merge with the Eknath Shinde faction. Take a look at this news report.
2: Mahadrama is unfolding in the national capital. After TMC, there seems to be open rebellion in Uddhav Sena camp. 3 years after the first Shiv Sena split, history seems to be repeating itself. Sources say six of Uddhav Sena's nine Lok Sabha MPs have reportedly sent a letter to the Lok Sabha Speaker on Wednesday morning seeking to merge with Eknath Shinde's Shiv Sena. Uddhav Thackeray-led Shiv Sena UBT has called it Operation Tiger. According to sources, six Sena UBT MPs flew into Delhi from Nanded, Pune and Mumbai in private planes early this morning. These MPs were accompanied by a senior Shinde Sena leader. In a bid to manage the crisis, Sena UBT has called a meeting of its MPs. Sena UBT Parliamentary Party leader Arvind Sawant has issued a whip directing all nine party MPs to attend the meeting on Thursday. Uddhav loyalist Sanjay Raut alleged that their MPs are being lured with cash and threatened with CBI and ED action.
3: जब हमारे पास ED, CBI, पुलिस होगी, तो और भी पार्टियों का घर मैनेज नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कोई घमंड की बात नहीं कि हम किसी की पार्टी तोड़ रहे हैं। आप ये सब जो है ना आपकी कवच कुंडले, हाँ, प्रोटेक्शन, ED, CBI का वो निकाल दीजिए और सामने आ जाइए हमारे, हम फिर दिखाते हैं। कौन कितना पानी में है जमीन पे है हम दिखा देंगे।
2: He even hurled abuses at those suspected of leaving the party while briefing the media. And to make sure that it was not a slip of tongue but a deliberate act, the Uddhav loyalist urged the media to not censor his abuses.
3: नहीं, don't cut, cut मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है।
2: Sena UBT MP Arvind Sawant wrote a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla urging him not to recognize any split.
4: खबर जिसने दी उससे जाके पूछो कि भाई खबर दे रहे हो तो कहाँ है वो लोग छह लोग का इकट्ठा फोटो बताओ, माननीय ओम बिरला से मिले होंगे तो उनका फोटो बताओ।
2: Sources in Speaker's office say verification is mandatory in cases of split. They add that it is essential for the Speaker to speak with every MP who should substantiate their claims. Sources pointed out that the petitions of TMC MPs were accepted only after they met the Speaker personally. If the move of the rebel MP succeeds, it meets the two-thirds requirement under the anti-defection law and boosts NDA members in the Lok Sabha. The opposition has hit out at the BJP, accusing it of breaking rival parties.
5: It's a very serious charge, what Mr. Sanjay Raut is saying. It should be looked into immediately, and the Speaker must act in an unbiased fashion. And it is true that the current government is trying to create divisions within the opposition parties, breaking parties, and to create a majority when none exists. In the Lok Sabha elections, the BJP got 240 seats, a minority government. A coalition government was formed. It did not get 400 seats. They want to pass bills that require two-third majority. That mandate they don't have.
2: Eknath Shinde let Shiv Sena call the rebellion a result of ill-treatment of MPs within Uddhav's party.
6: Sanjay Raut, jo ye farji aankde logon ke saamne leke aate hain, isko saabit karne ke liye unke paas dam nahi hai, taakat nahi hai. Isko sthapit nahi kar sakte. इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में संजय राउत अपने साथियों को कभी गाली देते हैं, कभी उनको बिकाऊ बताते हैं, कभी उनकी कीमत लगाते हैं. तो यह उनका अपना फ्रस्ट्रेशन है. उस फ्रस्ट्रेशन पर मुझे कुछ नहीं बोलना है.
2: 3 years after the first split, the Shiv Sena war is playing out again ahead of the Shiv Sena's foundation day on June 19th. With Piyush Mishra and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: Maria Shakil spoke to Uddhav's trusted aide amid the Maha political potboiler. Here's an excerpt from the interview.
7: Hello everyone, and welcome to this very special conversation. We have the biggest newsmaker amidst this entire crisis playing out in Shiv Sena Uddhav Thackeray faction. Someone who understands Uddhav Thackeray very, very closely, has worked very closely with him, perhaps one of the most trusted lieutenants of Uddhav Thackeray, Sanjay Raut, Member of Parliament, is joining us here. Sanjay Raut ji, thank you for speaking to India Today. Namaskar. Let me begin with what you have said in the press conference that you held just a couple of hours ago. Resign and go. Who are you telling this? Kaun, kisko aap bol rahe hain ki resign karke chale jao?
3: देखिए, तृणमूल कांग्रेस के भी हो सकते हैं. जिस तरह से 20-22 सांसद उनके ममता बनर्जी के नाम पर, उनके पार्टी के आइडियोलॉजी पर चुनकर आए और एक बार चुनाव हार गए तो भाग गए. हाँ, आपको भागना है तो भाग जाइए, लेकिन जिस पार्टी ने, जिस होटल ने आपको चुन कर दिया है, आप उनके साथ दगाबाजी क्यों कर रहे हो? आप इस्तीफा दीजिए और जहां जाना है वहां से चुनाव लड़िए. वैसे ही मुंबई में, महाराष्ट्र में, आम आदमी पार्टी में, आप कोई भी किसी को कहां से भी किडनैप कर लेता है. डेमोक्रेसी में ये किडनैपिंग है.
7: लेकिन बहुत सारे सांसद तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं.
3: नहीं, कोई नहीं मर्जी से जाता है. मर्जी से कोई जाता नहीं. मर्जी से चुनाव हमारे पार्टी में आप लड़ते हो ना. चुनाव आप अपने मर्जी से हमारे पास आकर, हमारा उम्मीदवार बनकर, हमसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते हो. आपने पैसा खर्च कर रहे हो. पार्टी दे रही है आपको, पैसा दे रही है, उम्मीदवारी चुनाव का नॉमिनेशन दे रही है. पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं आपके लिए. पार्टी के नेता, चाहे हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जी और हम सब लोग, आपके लिए मेहनत करते हैं. हाँ, 25-25 दिन बाहर रहते हैं हम लोग, और बाद में आप हमारी मर्जी से जा रहे हो. कौन सी मर्जी? डेमोक्रेसी में मर्जी है आपकी. अगर आपके, आप अपने मर्जी के मालिक है, तो पार्टी ने आपको जो पद दिया है, चाहे विधायक हो या एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कॉरपोरेटर हो, आप इस्तीफा दीजिए, आपकी मर्जी.
7: लेकिन अभी खबर आ रही है संजय रावत जी कि लगभग 9:30 बजे आज ही इन लोगों ने, करीब 6 जो सांसद हैं आपके, 9 टोटल हैं, उसमें 2/3, उन लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है कि वो लोग अलग हो रहे हैं.
3: हम लोग के मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि अगर ये 6 लोग हैं तो 6 लोग लोकसभा स्पीकर के सामने जाकर खड़े होने चाहिए। आप कोई किसी के भी सिग्नेचर लेके जाएंगे और वो लेके छह है, अभी हम कल 10 सिग्नेचर लेके जाएंगे किसी और के, ये 10 लोग हमारे साथ आने को तैयार
7: बोल रहे वो फॉल्ट सिग्नेचर्स है।
3: देखिए हमारे एक सांसद है हिंगोली से नागेश अस्टिकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूं, यहां चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है,
7: उन्होंने आशंका जताई थी।
3: हाँ हमको बताया। और दूसरे हमारे संजय दिना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई तो उसने
7: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया,
3: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूं, मैं पार्टी के साथ हूं। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है। कल हमने एक व्हिप जारी किया है, पार्टी ने एक व्हिप जारी किया, कल हमने हमारे पार्लियामेंट्री दल की बैठक बुलाई है कल 11 बजे, कल पता चलेगा व्हिप का पालन कौन करता है या व्हिप को उल्लंघन कौन करता है, तुरंत एक्शन ले लेंगे हम।
7: तो रियल टेस्ट
3: कल है,
7: कल है।
3: यस,
7: अभी तक लोकसभा स्पीकर ने जब आपने मुलाकात की, आप गए थे, आपके साथ अरविंद सावंत गए थे, आप लोग सब मिल करके गए थे अभी लोकसभा स्पीकर के पास, तो उन्होंने उनको आपने क्या कहा?
3: हमने जाकर स्पीकर साहब से कहा कि हम बोल नहीं सकते सच है या झूठा, लेकिन खबर चल रही है कि हमारे पार्टी से, पार्लियामेंट्री पार्टी से कुछ लोग टूटकर एक अलग गुट बनाना चाहते हैं और आपके पास आने वाले हैं, तो ये मैंने हमने सुना है,
7: ये बोला आपने?
3: हाँ ये हमने सुना है, हमारे पास अब तक कोई ऑफिशियली किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको इन्फॉर्म करें, अगर ऐसी कोई ग्रुप आता है हमारे अप्रोक्स तो हमारा ये लेटर आप लीजिए, हमने उसमें सब कानूनन जो प्रावधान है उसमें दिए हैं, और सबसे पहले आप हमें बताइए, हम पार्टी है ओरिजिनल, और हम इतना ही आपसे चाहते हैं कि जो नियम कानून और संविधान और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है बस आप उसका पालन कीजिए और कुछ नहीं कीजिए, बस इतना ही कहा।
7: संजय राव जी, आपने एक ट्वीट किया था रात में,
3: हाँ,
7: अपना सपना मनी मनी है ना, और ये भी कहा था कि 15 करोड़ ऑफर किया जा रहा है स्विच करने के लिए,
3: दे दिया पैसा
7: नहीं, लेकिन सवाल है कि आपके सांसद ले रहे हैं, कौन ले रहा है?
3: मैंने कहा, बोला कि मेरे सांसद ले रहे हैं, हमारे सांसद ले रहे।
7: आपने कहा ऑफर किया जा रहा है,
3: आप पूरे ट्वीट पढ़िए, मैंने महाराष्ट्र के सांसद के बारे में कहा है,
7: हाँ, महाराष्ट्र के
3: कूज एमपीज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आज रात को उन्हें 15 करोड़ रुपया उनके घर में
7: आज दिया जाएगा, बोल
3: कल रात को,
7: अच्छा,
3: जब तक ये पैसा नहीं मिलता है तब तक कोई चार्टर फ्लाइट में नहीं बैठेगा, सबके चुनाव क्षेत्र में चार्टर फ्लाइट खड़े थे कल,
7: बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं
3: आप। और ये मैंने चार्टर फ्लाइट का फोटो भी आज दिया है, और ये 3 चार्टर फ्लाइट कल दिल्ली में उतर भी गए, एक पुणे से है, एक नांदेड़ से है, एक नागपुर से है, ये 3 चार्टर फ्लाइट है,
7: और इसमें महाराष्ट्र के एमपी आए,
3: महाराष्ट्र के एमपी आ गए, पैसा
7: तो वो उद्धव ठाकरे पैसा फैक्शन के हैं जो आपके साथ थे,
3: अभी पता चलेगा किसके है, पता चलेगा, लेकिन पैसा मिला सांसदों को 15 करोड़ इन एडवांस, 50-60 करोड़ का डील है, और उसका 15 करोड़ जब उनके हाथ में मिल गया तब वो फ्लाइट में बैठ गए और आ गए।
7: बट aren't यू कंसर्न सर दैट इफ दीज आर योर एमपीज, योर यूबीटी सेना फैक्शन एमपीज, देन यू हैव नॉट मैनेज टू कीप योर हाउस इन ऑर्डर, आपका अपना घर सही नहीं है,
3: जब
7: उसमें लोग नहीं है।
3: जब हमारे पास ईडी सीबीआई पुलिस होगी तो और भी पार्टियों का घर मैनेज नहीं हो पाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई घमंड की बात नहीं, हम निकाल दीजिए और सामने आ जाइए हमारे, हम फिर दिखाते हैं कौन कितना पानी में है, जमीन पे है, हम दिखा देंगे, ये तो कोई भी कर सकता है इस प्रकार से, अगर मेरे पास इस प्रकार की एजेंसी हो और मैं किसी के ऊपर दबाव डाल सकता हूं, लोग डरते हैं, सब लोग हमारे जैसे नहीं होते, जो होगा वो देखा जाएगा, लोग डरते हैं बेचारे,
8: अब आपको बताता हूं, हमारे एक एमपी है जिनका नाम है ओम राजे निंबाळकर, हम उनको ऐसा बच्चा था, उनको पहले एमएलए बनाया उद्धव जी ने, पार्टी ने दो बार का तीन बार का एमपी बनाया। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, उसके पिताजी का 20 साल पहले मर्डर हो गया, उसके पिताजी का पवन ओम राजे निंबाळकर का, भर सड़क पर उसकी गोली मारी और उसमें नाम आया उस वक्त के जो गृह मंत्री पदम सिंह पाटिल जी का, बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता है वो, ये उनके अंकल है, भाई उनके भाई थे। 20 साल तक ये कानूनी लड़ाई चलती रही और ये लड़का हमारे पार्टी में आया, हमारे पार्टी से एमएलए बन गया, कौन उसको बनाता है एमएलए, कौन उसको बनाता है एमपी तीन बार। अब कल उनका फैसला था, 20 साल के बाद कल वो डेट बोर्ड पर आ गई हाईकोर्ट के, अब फैसला है आज। और ये पवन राजे को मैसेज दिया गया एक पार्टी के प्रमुख नेता के तरफ से, अगर फैसला तुम्हारे हक में चाहिए तो हमारे पार्टी में आ जाओ, तुमको फैसला मिल जाएगा। और कल वो डेट आगे चली गई।
7: ये पूरा बिल्डअप ये कहा जा रहा है दैट इज इट इज लिंक्ड टू योर फाउंडेशन डे व्हिच इज ऑन 19।
8: तो दबाव किस प्रकार से होता है, ये दबाव का ये भी ऐसे कारण है, तुम्हें हाईकोर्ट का फैसला तुम्हारे मर्जी के मुताबिक मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा, आपके बाप का मर्डर का बारे में जो फैसला है।
7: यू आर सेइंग दैट इवन जुडिशरी इज इन्वॉल्वड हियर।
8: जुडिशरी कहां इन्वॉल्व नहीं है, चार साल से हम लोग तारीख पे तारीख ले रहे हमारे केस में, हाँ 10th शेड्यूल के बारे में हम दीवार पर हमारा सर फोड़ रहे हैं, 10th शेड्यूल के बारे में सुनवाई होती है क्या, पांच चीफ जस्टिस बदल गए लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।
7: 19th इज योर फाउंडेशन डे, 60 साल होगा पार्टी को, उस दिन शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा,
8: होने दो।
7: आपकी पार्टी के अभी 20 एमएलए हैं असेंबली में, एक आप राज्यसभा में, 9 लोकसभा में, लेकिन वो भी है कि संभावना है कि वो कुछ और एक फैक्शन बन सकता है जो चर्चा चल रही है, ये लेगेसी की भी लड़ाई है सर।
8: लेगेसी की लड़ाई शिंदे के पास जाएगी क्या, उद्धव ठाकरे को जन्म दिया बालासाहेब ठाकरे ने पार्टी को, बालासाहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे जी को उस वक्त पार्टी का चीफ बनाया, तो हम भी फॉलो करेंगे, पार्टी तो ऐसे ही चलेगी हमारी, इतना शिंदे फैक्शन किया, ये तो अमित शाह साहब की पार्टी है, अजित पवार की पार्टी, अमित शाह साहब की पार्टी है, अमित शाह जी ने पार्टी बनाई, मोदी जी ने ये दो पार्टी बनाई महाराष्ट्र में,
7: लेकिन जनता ने उनको फिर से जिताया है, मैंडेट दिया है।
8: हम उसको मैंडेट नहीं मानते भाई, मैंडेट ये नहीं होता है ना, इस तरह से आप लोकसभा में मैंडेट दिया हमको और 3 महीने में मैंडेट दिया ये लोगों को, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया 3 महीने में। जो बात पश्चिम बंगाल में हो गई वही बात महाराष्ट्र में हो गई,
7: तो यही मेरा सवाल,
8: आप पूरा चुनाव हैजैक कर लेते हो और चुनाव जीत लेते हो।
7: ये मेरा सवाल होगा कि अब इंडिया ब्लॉक का क्या होगा, आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ वो हम लोगों ने देखा, तृणमूल कांग्रेस का एक सिग्निफिकेंट चंक 2/3 जाके एनसीपीआई से मर्ज कर जाता है, असेंबली में भी वो टूट करके एलओपी बन जाता, एलओपी का दर्जा ले लेते हैं, आप लोगों के साथ भी अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर है?
8: ये लोग करते रहेंगे, देखो ये लोग करते रहेंगे, जब तक ये करते रहेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमारे में आज भी अगर आप में हमारी पार्टी तोड़ने की क्षमता आप रखते हैं एजेंसी का मिसयूज करके, तो हमारे जैसे लोग भी आज भी इस छल कपट से लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम लड़ेंगे।
7: इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर है?
8: इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर अच्छा है राहुल गांधी जी की लीडरशिप में। बात ऐसी है कि देखो कोई पार्टी तोड़ने से पार्टी खत्म नहीं होती ना, हमारी पार्टी है वो थोड़ी एमपी एमएलए बनाने के लिए बनी है, लोग आते हैं लोग चले जाते हैं ना, 60 साल में पार्टी टूटी है, नारायण राणे चले गए, एकनाथ शिंदे चले गए, छगन भुजबल चले गए, राज ठाकरे चले गए, पार्टी है पार्टी रहेगी, कभी कम ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, और नए लोग चुनकर लाएंगे हम।
7: आपका कहना है कि जो 6 नाम चल रहे हैं कि इन लोगों ने लोकसभा स्पीकर को अपना नाम सिग्नेचर के तौर पर दे दिया है कि वो उन लोगों को सेपरेट फैक्शन के तौर पर देखा जाए, उसमें से 2 सांसद जिनका नाम आपने लिया वो आपके साथ अभी भी संपर्क में है?
8: डेफिनेटली, बात ऐसे कि अभी हम जब ओम बिरला साहब से मिले तो मुझे नहीं लगता है कि अब तक किसी ने उनके पास इस प्रकार का लेटर दिया है।
7: दैट्स द सेंस दैट यू गॉट?
8: ऐसा मुझे लगता है, उनसे जब मैंने बात की तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमारे लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं उनके पास कोई जाकर इस प्रकार का क्लेम करके आए हैं कि हम अलग गुड मनाने जा रहे हैं, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है। जब मैं बिरला साहब को जानता हूँ बहुत नज़दीक से और वो खुलकर बात करने वाला आदमी है, हमने बहुत सी बातें बिरला साहब से की, लेकिन मुझे उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई हमारी, मुझे ये महसूस नहीं हो गया कि उनके पास जाकर किसी ने ये क्लेम किया है अब तक, अभी तक।
7: ओके, एंड यू आर सेइंग दैट द रियल टेस्ट विल बी टुमारो, क्योंकि आपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई है।
8: या,
7: एंड दैट विल बी हैपनिंग
8: डेफिनेटली। कल हम 11 बजे सबका इंतजार करेंगे, सबका स्वागत करेंगे, सबके लिए खाना पीना सब रखा है, इंतजाम है पूरा, आप आइए खाओ आप।
7: और उसी वक्त पता चलेगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन में कौन है।
8: आपने कल तक हमारा नमक खाया है, कल 11 बजे भी खाइए।
7: चलिए, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे सर।
8: थैंक यू।
9: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे। TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
3: कोई भी किसी को कहां से भी किडनैप कर लेता है. डेमोक्रेसी में ये किडनैपिंग है.
4: लेकिन बहुत सारे सांसद तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं.
3: नहीं, कोई नहीं मर्जी से जाता है. मर्जी से कोई जाता नहीं. मर्जी से चुनाव हमारे पार्टी में आप लड़ते हो ना. चुनाव आप अपने मर्जी से हमारे पास आकर हमारा उम्मीदवार बनकर हमसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते हो. आपने पैसा खर्च कर रहे हो. पार्टी दे रही है आपको पैसा, दे रही है उम्मीदवारी चुनाव का नॉमिनेशन दे रही है. पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं आपके लिए. पार्टी के नेता, चाहे हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जी और हम सब लोग आपके लिए मेहनत करते हैं. हाँ, 25-25 दिन बाहर रहते हैं हम लोग, और बाद में आप हमारी मर्जी से जा रहे हो. कौन सी मर्जी? डेमोक्रेसी में मर्जी है आपकी. अगर आप अपने मर्जी के मालिक है तो पार्टी ने आपको जो पद दिया है, चाहे विधायक हो या MLA हो, चाहे MP हो, चाहे कॉरपोरेटर हो, आप इस्तीफा दीजिए, आपकी मर्जी.
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: लगभग 9:30 बजे आज ही इन लोगों ने करीब 6 जो सांसद हैं आपके, 9 टोटल हैं, उसमें 2/3 उन लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है कि वो लोग अलग हो रहे हैं।
1: हम लोग के मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि अगर ये 6 लोग हैं तो 6 लोग लोकसभा स्पीकर के सामने जाकर खड़े होने चाहिए। आप कोई किसी के भी सिग्नेचर लेके जाएंगे और बोलेंगे 6 है, अभी हम कल 10 सिग्नेचर लेके जाएंगे किसी और के, ये 10 लोग हमारे साथ आने को तैयार
0: बोल रहे हैं वो फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स है।
1: देखिए, हमारा एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अस्टिकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है,
0: उन्होंने आशंका जताई थी।
1: हाँ, हमको बताया। और दूसरे हमारे संजय दिना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
0: अभी कहा, बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया।
1: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूं, मैं पार्टी के साथ हूं। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे, हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है। कल हमने एक व्हिप जारी किया है, पार्टी ने एक व्हिप जारी किया, कल हमने हमारे पार्लियामेंट्री दल की बैठक बुलाई है कल 11 बजे, कल पता चलेगा व्हिप का पालन कौन करता है या व्हिप को उल्लंघन कौन करता है, तुरंत एक्शन ले लेंगे हम।
0: तो रियल टेस्ट
1: कल है,
0: कल है।
1: यस।

0: Speculations have turned into a full-blown crisis. Speculations of a fresh rebellion inside Uddhav Thackeray's Shiv Sena UBT have intensified today. According to sources, six Sena UBT MPs have sent a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla this morning seeking to merge with the Eknath Shinde faction. Take a look at this news report.
1: Mahadrama is unfolding in the national capital. After TMC, there seems to be open rebellion in Uddhav Sena camp. 3 years after the first Shiv Sena split, history seems to be repeating itself. Sources say six of Uddhav Sena's nine Lok Sabha MPs have reportedly sent a letter to the Lok Sabha Speaker on Wednesday morning seeking to merge with Eknath Shinde's Shiv Sena. Uddhav Thackeray-led Shiv Sena UBT has called it Operation Tiger. According to sources, six Sena UBT MPs flew into Delhi from Nanded, Pune and Mumbai in private planes early this morning. These MPs were accompanied by a senior Shinde Sena leader. In a bid to manage the crisis, Sena UBT has called a meeting of its MPs. Sena UBT Parliamentary Party leader Arvind Sawant has issued a whip directing all nine party MPs to attend the meeting on Thursday. Uddhav loyalist Sanjay Raut alleged that their MPs are being loaded with cash and threatened with CBI and ED action.
2: जब हमारे पास ED, CBI, पुलिस होगी, तो और भी पार्टियों का घर मैनेज नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कोई घमंड की बात नहीं कि हम किसी की पार्टी तोड़ रहे हैं। आप ये सब जो है ना आपकी कवच कुंडले, हाँ, प्रोटेक्शन, ED, CBI का वो निकाल लीजिए और सामने आ जाइए हमारे, हम फिर दिखाते हैं। कौन कितना पानी में है जमीन पे है हम दिखा देंगे।
1: He even hurled abuses at those suspected of leaving the party while briefing the media. And to make sure that it was not a slip of tongue but a deliberate act, the Uddhav loyalist urged the media to not censor his abuses.
2: Don't cut, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है।
1: Sena UBT MP Arvind Sawant wrote a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla urging him not to recognize any split.
3: खबर जिसने दी उससे जाके पूछो कि भाई खबर दे रहे हो तो कहाँ है वो लोग? वो लोग छह लोग का इकट्ठा फोटो बताओ। माननीय ओम बिरला से मिले होंगे तो उनका फोटो बताओ।
1: Sources and speakers office say verification is mandatory in cases of split. They add that it is essential for the speaker to speak with every MP who should substantiate their claims. Sources pointed out that the petitions of TMC MPs were accepted only after they met the speaker personally. If the move of the rebel MP succeeds, it meets the two-thirds requirement under the anti-defection law and boosts NDA members in the Lok Sabha. The opposition has hit out at the BJP, accusing it of breaking rival parties.
4: It's a very serious charge, what Mr. Sanjay Raut is saying. It should be looked into immediately and the speaker must act in an unbiased fashion. And it is true that the current government is trying to create divisions within the opposition parties, breaking parties and to create a majority when none exists. In the Lok Sabha elections, the BJP got 240 seats, a minority government, a coalition government was formed. It did not get 400 seats. They want to pass bills that require two-third majority. That mandate they don't have.
1: Eknath Shinde led Shiv Sena call the rebellion a result of ill-treatment of MPs within Uddhav's party.
5: Sanjay Raut, jo ye farji aankde logon ke saamne leke aate hain, isko saabit karne ke liye unke paas dam nahi hai, taakat nahi hai. Isko sthapit nahi kar sakte. इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में संजय राउत अपने साथियों को कभी गाली देते हैं, कभी उनको बिकाऊ बताते हैं, कभी उनकी कीमत लगाते हैं, तो यह उनका अपना फ्रस्ट्रेशन है। उस फ्रस्ट्रेशन पर मुझे कुछ नहीं बोलना है।
1: 3 years after the first split, the Shiv Sena war is playing out again ahead of the Shiv Sena's foundation day on June 19th. With Piyush Mishra and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
0: Maria Shakil spoke to Uddhav's trusted aide amid the Maha political potboiler. Here's an excerpt from the interview.
6: Hello everyone and welcome to this very special conversation. We have the biggest newsmaker amidst this entire crisis playing out in Shiv Sena Uddhav Thackeray faction. Someone who understands Uddhav Thackeray very, very closely, has worked very closely with him, perhaps one of the most trusted lieutenants of Uddhav Thackeray, Sanjay Rawat, Member of Parliament, is joining us here. Sanjay Rawat ji, thank you for speaking to India Today. Namaskar. Let me begin with what you have said in the press conference that you held just a couple of hours ago. Resign and go. Who are you telling this? Kaun, kisko aap bol rahe hain ki resign karke chale jao?
2: Dekhiye, Trinamool Congress ke bhi ho sakte hain. जिस तरह से 20-22 सांसद उनके ममता बनर्जी के नाम पर, उनके पार्टी के आइडियोलॉजी पर चुनकर आए और एक बार चुनाव हार गए तो भाग गए. हाँ, आपको भागना है तो भाग जाइए, लेकिन जिस पार्टी ने, जिस होटल ने आपको चुन कर दिया है, आप उनके साथ दगाबाजी क्यों कर रहे हो? आप इस्तीफा दीजिए और जहां जाना है वहां से चुनाव लड़िए. वैसे ही मुंबई में, महाराष्ट्र में, आम आदमी पार्टी में, आप कोई भी किसी को कहां से भी किडनैप कर लेता है. डेमोक्रेसी में ये किडनैपिंग है.
6: लेकिन बहुत सारे सांसद तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं.
2: नहीं, कोई नहीं मर्जी से जाता है. मर्जी से कोई जाता नहीं. मर्जी से चुनाव हमारे पार्टी में आप लड़ते हो ना. चुनाव आप अपने मर्जी से हमारे पास आकर, हमारा उम्मीदवार बनकर, हमसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते हो. आपने पैसा खर्च कर रहे हो. पार्टी दे रही है आपको, पैसा दे रही है, उम्मीदवारी चुनाव का नॉमिनेशन दे रही है. पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं आपके लिए. पार्टी के नेता, चाहे हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जी और हम सब लोग, आपके लिए मेहनत करते हैं. हाँ, 25-25 दिन बाहर रहते हैं हम लोग, और बाद में आप हमारी मर्जी से जा रहे हो. कौन सी मर्जी? डेमोक्रेसी में मर्जी है आपकी. अगर आपके, आप अपने मर्जी के मालिक है, तो पार्टी ने आपको जो पद दिया है, चाहे विधायक हो या

0: चाहे कॉरपोरेटर हो, आप इस्तीफा दीजिए, आपकी मर्जी।
1: लेकिन अभी खबर आ रही है संजय रावत जी कि लगभग 9:30 बजे आज ही इन लोगों ने करीब 6 जो सांसद हैं आपके, 9 टोटल हैं, उसमें 2/3 उन लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है कि वो लोग अलग हो रहे हैं।
0: हम लोग के मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि अगर ये 6 लोग है तो 6 लोग लोकसभा स्पीकर के सामने जाकर खड़े होने चाहिए। आप कोई किसी के भी सिग्नेचर लेके जाएंगे और बोलेंगे 6 है, अभी हम कल 10 सिग्नेचर लेके जाएंगे किसी और के, ये 10 लोग हमारे साथ आने को तैयार
1: बोल रहे हैं वो फॉल्स सिग्नेचर्स है।
0: देखिए, हमारे एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अस्टिकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूं, यहां चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है,
1: उन्होंने आशंका जताई थी।
0: हाँ, हमको बताया। और दूसरे हमारे संजय जिना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई तो उसने
1: अभी कहा, बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया।
0: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूं, मैं पार्टी के साथ हूं। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे, हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है। कल हमने एक व्हिप जारी किया है, पार्टी ने एक व्हिप जारी किया, कल हमने हमारे पार्लियामेंट्री दल की बैठक बुलाई है कल 11 बजे। कल पता चलेगा व्हिप का पालन कौन करता है या व्हिप को उल्लंघन कौन करता है, तुरंत एक्शन ले लेंगे हम।
1: तो रियल टेस्ट
0: कल है,
1: कल है,
0: यस।
1: अभी तक लोकसभा स्पीकर ने जब आपने मुलाकात की, आप गए थे, आपके साथ अरविंद सावंत गए थे, आप लोग सब मिलकर के गए थे अभी लोकसभा स्पीकर के पास, तो उन्होंने, उनको आपने क्या कहा?
0: हमने जाकर स्पीकर साहब से कहा कि हम बोल नहीं सकते सच है या झूठा, लेकिन खबर चल रही है कि हमारे पार्टी से, पार्लियामेंट्री पार्टी से कुछ लोग टूटकर एक अलग गुट बनाना चाहते हैं और आपके पास आने वाले हैं, तो ये मैंने, हमने सुना है,
1: ये बोला आपने?
0: हाँ, ये हमने सुना है, हमारे पास अब तक कोई ऑफिशियली किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको इन्फॉर्म करें, अगर ऐसी कोई ग्रुप आता है हमारे अप्रोक्स, तो हमारा ये लेटर आप लीजिए, हमने उसमें सब कानूनन जो प्रावधान है उसमें दिए हैं, और सबसे पहले आप हमें बताइए, हम पार्टी है ओरिजिनल, और हम इतना ही आपसे चाहते हैं कि जो नियम कानून और संविधान और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, बस आप उसका पालन कीजिए और कुछ नहीं कीजिए, बस इतना ही कहा।
1: संजय राव जी, आपने एक ट्वीट किया था रात में,
0: हाँ,
1: अपना सपना मनी मनी, हाँ, है ना, और हाँ, ये भी कहा था कि 15 करोड़ ऑफर किया जा रहा है स्विच करने के लिए,
0: दे दिया पैसा
1: नहीं, लेकिन सवाल है कि आपके सांसद ले रहे हैं, कौन ले रहा है?
0: मैंने कहा, बोला कि मेरे सांसद ले रहे हैं, हमारे सांसद ले रहे।
1: आपने कहा ऑफर किया जा रहा है,
0: आप पूरा ट्वीट पढ़िए, मैंने महाराष्ट्र के सांसद के बारे में कहा है,
1: महाराष्ट्र के,
0: महाराष्ट्र के कुछ एमपीज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आज रात को उन्हें 15-15 करोड़ रुपया उनके घर में
1: आज दिया जाएगा, बोल
0: कल रात को।
1: अच्छा,
0: जब तक ये पैसा नहीं मिलता है तब तक कोई चार्टर फ्लाइट में नहीं बैठेगा, सबके चुनाव क्षेत्र में चार्टर फ्लाइट खड़े थे कल।
1: बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप।
0: और ये मैंने चार्टर फ्लाइट का फोटो भी आज दिया है, और ये 3 चार्टर फ्लाइट कल दिल्ली में उतर भी गए, एक पुणे से है, एक नांदेड़ से है, एक नागपुर से है, ये 3 चार्टर फ्लाइट है,
1: और इसमें महाराष्ट्र के एमपी आए,
0: महाराष्ट्र के एमपी आ गए, पैसा,
1: तो वो उद्धव ठाकरे
0: पैसा
1: फैक्शन के हैं जो आपके साथ थे,
0: अभी पता चलेगा किसके हैं, पता चलेगा, लेकिन पैसा मिला सांसदों को 15-15 करोड़ इन एडवांस, 50-60 करोड़ का डील है, और उसका 15 करोड़ जब उनके हाथ में मिल गया तब वो फ्लाइट में बैठ गए और आ गए।
1: बट आंट यू कंसर्न सर दैट इफ दीज आर your MPs, your UBT Sena faction MPs, then you have not managed to keep your house in order. आपका अपना घर सही नहीं है,
0: जब
1: उसमें लोग नहीं है।
0: जब हमारे पास ED, CBI, पुलिस होगी तो और भी पार्टियों का घर मैनेज नहीं हो पाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई

0: कोई घमंड की बात नहीं कि हम किसी की पार्टी तोड़ रहे हैं। आप ये सब जो है ना आपकी कवच कुंडले हाँ प्रोटेक्शन ईडी सीबीआई का वो निकाल दीजिए और सामने आ जाइए हमारे, हम फिर दिखाते हैं कौन कितना पानी में है जमीन पे है, हम दिखा देंगे। ये तो कोई भी कर सकता है इस प्रकार से, अगर मेरे पास इस प्रकार की एजेंसी हो और मैं किसी के ऊपर दबाव डाल सकता हूं। लोग डरते हैं, सब लोग हमारे जैसे नहीं होते, जो होगा वो देखा जाएगा। लोग डरते हैं बेचारे। अब आपको बताता हूं, हमारे एक एमपी है जिनका नाम है ओम राजे निंबाळकर, हम उनको ऐसा बच्चा था, उनको पहले एमएलए बनाया उद्धव जी ने, पार्टी ने दो बार का तीन बार का एमपी बनाया। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, उसके पिताजी का 20 साल पहले मर्डर हो गया, उसके पिताजी का पवन ओम राजे निंबाळकर का, भर सड़क पर उसकी गोली मारी और उसमें नाम आया उस वक्त के जो गृह मंत्री पदम सिंह पाटिल जी का, बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता है वो, ये उनके अंकल है, भाई उनके भाई थे। 20 साल तक ये कानूनी लड़ाई चलती रही और ये लड़का हमारे पार्टी में आया, हमारे पार्टी से एमएलए बन गया। कौन उसको बनाता है एमएलए, कौन उसको बनाता है एमपी तीन बार। अब कल उनका फैसला था, 20 साल के बाद कल वो डेट बोर्ड पर आ गई हाईकोर्ट के, अब फैसला है आज। और ये पवन राजे को मैसेज दिया गया एक पार्टी के प्रमुख नेता के तरफ से, अगर फैसला तुम्हारे हक में चाहिए तो हमारे पार्टी में आ जाओ, तुमको फैसला मिल जाएगा। और कल वो डेट आगे चली गई।
1: ये पूरा बिल्डअप ये कहा जा रहा है दैट इज इट इज लिंक्ड टू योर फाउंडेशन डे व्हिच इज ऑन 19।
0: तो दबाव किस प्रकार से होता है, ये दबाव का ये भी ऐसे कारण है, तुम्हें हाईकोर्ट का फैसला तुम्हारे मर्जी के मुताबिक मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा, आपके बाप का मर्डर का बारे में जो फैसला है।
1: यू आर सेइंग दैट इवन जुडिशरी इज इन्वॉल्व्ड हियर।
0: जुडिशरी कहां इन्वॉल्व नहीं है, चार साल से हम लोग तारीख पे तारीख ले रहे हमारे केस में, हाँ 10th शेड्यूल के बारे में हम दीवार पर हमारा सर फोड़ रहे हैं 10th शेड्यूल के बारे में। सुनवाई होती है क्या, पांच चीफ जस्टिस बदल गए लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।
1: 19th इज योर फाउंडेशन डे, 60 साल होगा पार्टी को, उस दिन शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा,
0: होने दो।
1: आपकी पार्टी के अभी 20 एमएलए हैं असेंबली में, एक आप राज्यसभा में, 9 लोकसभा में, लेकिन वो भी है कि संभावना है कि वो कुछ और एक फैक्शन बन सकता है जो चर्चा चल रही है। ये लेगेसी की भी लड़ाई है सर।
0: लेगेसी की लड़ाई शिंदे के पास जाएगी क्या, उद्धव ठाकरे को जन्म दिया बाला साहब ठाकरे ने पार्टी को, बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे जी को उस वक्त पार्टी का चीफ बनाया, तो हम भी फॉलो करेंगे, पार्टी तो ऐसे ही चलेगी हमारी। इतना शिंदे फैक्शन किया, ये तो अमित शाह साहब की पार्टी है, अजित पवार की पार्टी, अमित शाह साहब की पार्टी है, अमित शाह जी ने पार्टी बनाई, मोदी जी ने ये दो पार्टी बनाई महाराष्ट्र में,
1: लेकिन जनता ने उनको फिर से जिताया है, मैंडेट दिया है।
0: हम उसको मैंडेट नहीं मानते भाई, मैंडेट ये नहीं होता है ना, इस तरह से आप लोकसभा में मैंडेट दिया हमको और 3 महीने में मैंडेट दिया ये लोगों को, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया 3 महीने में। जो बात पश्चिम बंगाल में हो गई वही बात महाराष्ट्र में हो गई,
1: तो यही मेरा सवाल।
0: आप पूरा चुनाव हैजाक कर लेते हो और चुनाव जीत लेते हो।
1: ये मेरा सवाल होगा कि अब इंडिया ब्लॉक का क्या होगा, आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ वो हम लोगों ने देखा, तृणमूल कांग्रेस का एक सिग्निफिकेंट चंक 2/3 जाके एनसीपीआई से मर्ज कर जाता है, असेंबली में भी वो टूट करके एलओपी बन जाता, एलओपी का दर्जा ले लेते हैं, आप लोगों के साथ भी अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर है?
0: ये लोग करते रहेंगे, देखो ये लोग करते रहेंगे, जब तक ये करते रहेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमारे में आज भी अगर आप में हमारी पार्टी तोड़ने की क्षमता आप रखते हैं एजेंसी का मिसयूज करके, तो हमारे जैसे लोग भी आज भी इस छल कपट से लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम लड़ेंगे।
1: इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर है?
0: इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर अच्छा है राहुल गांधी जी की लीडरशिप में। बात ऐसी है कि देखो कोई पार्टी तोड़ने से पार्टी खत्म नहीं होती ना, हमारी पार्टी है, वो थोड़ी एमपी एमएलए बनाने के लिए बनी है। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं ना, 60 साल में पार्टी टूटी है। नारायण राणे चले गए, एकनाथ शिंदे चले गए, छगन भुजबल चले गए, राज ठाकरे चले गए, पार्टी है, पार्टी रहेगी, कभी कम ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। और नए लोग चुनकर लाएंगे हम।
1: आपका कहना है कि जो 6 नाम चल रहे हैं कि इन लोगों ने लोकसभा स्पीकर को अपना नाम सिग्नेचर के तौर पर दे दिया है कि वो उन लोगों को सेपरेट फैक्शन के तौर पर देखा जाए, उसमें से 2 सांसद जिनका नाम आपने लिया वो आपके साथ अभी भी संपर्क में
0: है? डेफिनेटली। बात ऐसे कि अभी हम जब ओम बिरला साहब से मिले तो मुझे नहीं लगता है कि अब तक किसी ने उनके पास इस प्रकार का लेटर दिया है।
1: दैट्स द सेंस दैट यू गॉट?
0: ऐसा मुझे लगता है, उनसे जब मैंने बात की तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमारे लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं उनके पास कोई जाकर इस प्रकार का क्लेम करके आए हैं कि हम अलग गुट मनाने जा रहे हैं, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है। जब मैं बिरला साहब को जानता हूँ बहुत नज़दीक से और वो खुलकर बात करने वाला आदमी है, हमने बहुत सी बातें बिरला साहब से की, लेकिन मुझे उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई हमारी, मुझे ये महसूस नहीं हो गया कि उनके पास जाकर किसी ने ये क्लेम किया है अब तक, अभी तक।
1: ओके, एंड यू आर सेइंग दैट द रियल टेस्ट विल बी टुमारो, क्योंकि आपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई है।
0: या,
1: एंड दैट विल बी हैपनिंग
0: डेफिनेटली। कल हम 11 बजे सबका इंतजार करेंगे, सबका स्वागत करेंगे, सबके लिए खाना पीना सब रखा है, इंतजाम है पूरा, आप आइए खाओ आप।
1: और उसी वक्त पता चलेगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन में कौन है।
0: आपने कल तक हमारा नमक खाया है, कल 11 बजे भी खाइए।
1: चलिए, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे सर।
0: थैंक यू।
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.

0: create a majority when none exists. In the Lok Sabha elections, the BJP got 240 seats, a minority government. A coalition government was formed. It did not get 400 seats. They want to pass bills that require two-third majority. That mandate they don't have.
1: Eknath Shinde let Shiv Sena call the rebellion a result of ill-treatment of MPs within Uddhav's party.
2: Sanjay Raut, jo ye farji aankde logon ke saamne leke aate hain, isko saabit karne ke liye unke paas dam nahi hai, taakat nahi hai. Isko sthapit nahi kar sakte. इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में संजय राउत अपने साथियों को कभी गाली देते हैं, कभी उनको बिकाऊ बताते हैं, कभी उनकी कीमत लगाते हैं. तो यह उनका अपना फ्रस्ट्रेशन है. उस फ्रस्ट्रेशन पर मुझे कुछ नहीं बोलना है.
1: थ्री इयर्स आफ्टर द फर्स्ट स्प्लिट, द शिवसेना वॉर इज प्लेइंग आउट अगेन अहेड ऑफ द शिवसेना फाउंडेशन डे ऑन June 19th. विद पीयूष मिश्रा एंड हिमांशु मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे.
3: Maria Shakil spoke to Uddhav's trusted aide amid the Maha political potboiler. Here's an excerpt from the interview.
4: Hello everyone and welcome to this very special conversation. We have the biggest newsmaker amidst this entire crisis playing out in Shiv Sena Uddhav Thackeray faction. Someone who understands Uddhav Thackeray very, very closely, has worked very closely with him, perhaps one of the most trusted lieutenants of Uddhav Thackeray, Sanjay Rawat, Member of Parliament, is joining us here. Sanjay Rawat ji, thank you for speaking to India Today. Namaskar. Let me begin with what you have said in the press conference that you held just a couple of hours ago. Resign and go. Who are you telling this? Kaun, kisko aap bol rahe hain ki resign karke chale jao?
5: Dekhiye, Trinamool Congress ke bhi ho sakte hain. जिस तरह से 20-22 सांसद उनके ममता बनर्जी के नाम पर, उनके पार्टी के आइडियोलॉजी पर चुनकर आए और एक बार चुनाव हार गए तो भाग गए. हाँ, आपको भागना है तो भाग जाइए, लेकिन जिस पार्टी ने, जिस होटल ने आपको चुन कर दिया है, आप उनके साथ दगाबाजी क्यों कर रहे हो? आप इस्तीफा दीजिए और जहां जाना है वहां से चुनाव लड़िए. वैसे ही मुंबई में, महाराष्ट्र में, आम आदमी पार्टी में आप कोई भी किसी को कहां से भी किडनैप कर लेता है. डेमोक्रेसी में ये किडनैपिंग है.
4: लेकिन बहुत सारे सांसद तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं.
5: नहीं, कोई नहीं मर्जी से जाता है. मर्जी से कोई जाता नहीं. मर्जी से चुनाव हमारे पार्टी में आप लड़ते हो ना. चुनाव आप अपने मर्जी से हमारे पास आकर, हमारा उम्मीदवार बनकर, हमसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते हो. आपने पैसा खर्च कर दो, पार्टी दे रही है आपको पैसा, दे रही है उम्मीदवारी, चुनाव का नॉमिनेशन दे रही है. पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं आपके लिए. पार्टी के नेता, चाहे हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जी और हम सब लोग आपके लिए मेहनत करते हैं. हाँ, 25-25 दिन बाहर रहते हम लोग और बाद में आप हमारी मर्जी से जा रहे हो. कौन सी मर्जी? डेमोक्रेसी में मर्जी है आपकी. अगर आपके आप अपने मर्जी के मालिक है तो पार्टी ने आपको जो पद दिया है, चाहे विधायक हो या एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कॉरपोरेटर हो, आप इस्तीफा दीजिए, आपकी मर्जी.
4: लेकिन अभी खबर आ रही है संजय रावत जी कि लगभग 9:30 बजे आज ही इन लोगों ने करीब 6 जो सांसद हैं आपके, 9 टोटल है, उसमें 2/3, उन लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है कि वो लोग अलग हो रहे हैं.
5: हम लोग के मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि अगर ये 6 लोग हैं तो 6 लोग लोकसभा स्पीकर के सामने जाकर खड़े होने चाहिए. आप कोई किसी के भी सिग्नेचर लेके जाएंगे और वो लेके 6 है, अभी हम कल 10 सिग्नेचर लेके जाएंगे किसी और के, ये 10 लोग हमारे साथ आने को तैयार
4: बोल रहे हैं. वो फॉल्स सिग्नेचर्स है.
5: देखिए, हमारा एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अष्टेकर. वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूं, यहां चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है.
4: उन्होंने आशंका जताई थी.
5: हाँ, हमको बताया. और दूसरे हमारे संजय दिना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई तो उसने
4: अभी कहा, बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया.
5: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूं, मैं पार्टी के साथ हूं. अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है। कल हमने एक व्हिप जारी किया है, पार्टी ने एक व्हिप जारी किया, कल हमने हमारे पार्लियामेंट्री दल की बैठक बुलाई है कल 11 बजे। कल पता चलेगा व्हिप का पालन कौन करता है या व्हिप को उल्लंघन कौन करता है।

0: सच है या झूठा, लेकिन खबर चल रही है कि हमारे पार्टी से, पार्लियामेंट्री पार्टी से कुछ लोग टूटकर एक अलग गुट बनाना चाहते हैं और आपके पास आने वाले हैं, तो ये मैंने, हमने सुना है,
1: ये बोला आपने?
0: हाँ, ये हमने सुना है, हमारे पास अब तक कोई ऑफिशियली किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको इन्फॉर्म करें, अगर ऐसी कोई ग्रुप आता है हमारे अप्रोक्स, तो ये हमारा ये लेटर आप लीजिए, हमने उसमें सब कानूनन जो प्रावधान है उसमें दिए हैं, और सबसे पहले आप हमें बताइए, हम पार्टी है ओरिजिनल, और हम इतना ही आपसे चाहते हैं कि जो नियम कानून और संविधान और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, बस आप उसका पालन कीजिए और कुछ नहीं कीजिए, बस इतना ही कहा।
1: संजय राव जी, आपने एक ट्वीट किया था रात में,
0: हाँ,
1: अपना सपना मनी मनी, है ना, और ये भी कहा था कि 15 करोड़ ऑफर किया जा रहा है स्विच करने के लिए,
0: दे दिया पैसा
1: नहीं, लेकिन सवाल है कि आपके सांसद ले रहे हैं, कौन ले रहा है?
0: मैंने कहा, बोला कि मेरे सांसद ले रहे हैं, हमारे सांसद ले रहे।
1: आपने कहा ऑफर किया जा रहा है,
0: आप पूरे ट्वीट पढ़िए, मैंने महाराष्ट्र के सांसद के बारे में कहा है,
1: महाराष्ट्र के,
0: महाराष्ट्र के कुज एमपीज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आज रात को उन्हें 15-15 करोड़ रुपया उनके घर में
1: आज दिया जाएगा, बोल
0: कल रात को।
1: अच्छा,
0: जब तक ये पैसा नहीं मिलता है तब तक कोई चार्टर फ्लाइट में नहीं बैठेगा, सबके चुनाव क्षेत्र में चार्टर फ्लाइट खड़े थे कल।
1: बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप।
0: और ये मैंने चार्टर फ्लाइट का फोटो भी आज दिया है, और ये 3 चार्टर फ्लाइट कल दिल्ली में उतर भी गए, एक पुणे से है, एक नांदेड़ से है, एक नागपुर से है, ये 3 चार्टर फ्लाइट है,
1: और इसमें महाराष्ट्र के एमपी आए,
0: महाराष्ट्र के एमपी आ गए। पैसा
1: तो वो उद्धव ठाकरे
0: पैसा
1: फैक्शन के हैं जो आपके साथ थे,
0: अभी पता चलेगा किसके है, पता चलेगा, लेकिन पैसा मिला सांसदों को 15-15 करोड़ इन एडवांस, 50-60 करोड़ का डील है, और उसका 15 करोड़ जब उनके हाथ में मिल गया तब वो फ्लाइट में बैठ गए और आ गए।
1: बट आंट यू कंसर्न सर दैट इफ दीज आर योर एमपीज, योर यूबीटी सेना फैक्शन एमपीज, देन यू हैव नॉट मैनेज टू कीप योर हाउस इन ऑर्डर, आपका अपना घर सही नहीं है,
0: जब
1: उसमें लोग नहीं है।
0: जब हमारे पास ईडी सीबीआई पुलिस होगी तो और भी पार्टियों का घर मैनेज नहीं हो पाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई घमंड की बात नहीं कि हम किसी की पार्टी तोड़ रहे हैं, आप ये सब जो है ना आपकी कवच कुंडले, हाँ, प्रोटेक्शन ईडी सीबीआई का वो निकाल दीजिए और सामने आ जाइए हमारे, हम फिर दिखाते हैं कौन कितना पानी में है, जमीन पे है, हम दिखा देंगे। ये तो कोई भी कर सकता है इस प्रकार से, अगर मेरे पास इस प्रकार की एजेंसी हो और मैं किसी के ऊपर दबाव डाल सकता हूं, लोग डरते हैं, सब लोग हमारे जैसे नहीं होते, जो होगा वो देखा जाएगा, लोग डरते हैं बेचारे। अब आपको बताता हूं, हमारे एक एमपी है जिनका नाम है ओम राजे निंबाळकर, हम उनको ऐसा बच्चा था, उनको पहले एमएलए बनाया उद्धव जी ने, पार्टी ने 2 बार का 3 बार का एमपी बनाया, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, उसके पिताजी का 20 साल पहले मर्डर हो गया, उसके पिताजी का पवन ओम राजे निंबाळकर का, भर सड़क पर उसकी गोली मारी, और उसमें नाम आया उस वक्त के जो गृह मंत्री पदम सिंह पाटिल जी का, बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता है वो, ये उनके अंकल है, भाई उनके भाई थे, 20 साल तक ये कानूनी लड़ाई चलती रही, और ये लड़का हमारे पार्टी में आया, हमारे पार्टी से एमएलए बन गया, कौन उसको बनाता है एमएलए, कौन उसको बनाता है एमपी 3 बार। अब कल उनका फैसला था, 20 साल के बाद कल वो डेट बोर्ड पर आ गई हाईकोर्ट के, अब फैसला है आज, और ये पवन राजे को मैसेज दिया गया एक पार्टी के प्रमुख नेता के तरफ से, अगर फैसला तुम्हारे हक में चाहिए तो हमारे पार्टी में आ जाओ, तुमको फैसला मिल जाएगा, और कल वो डेट आगे चली गई।
1: ये पूरा बिल्डअप ये कहा जा रहा है दैट इज इट इज लिंक्ड टू योर फाउंडेशन डे व्हिच इज ऑन 19।
0: तो दबाव किस प्रकार से होता है, ये दबाव का ये भी ऐसे कारण है तुम्हें हाईकोर्ट का फैसला तुम्हारे मर्जी के